0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करे। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकाले। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है।

साथियों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ श्रोता साथियों, बड़े सपने देखिए, कड़ी मेहनत कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में एक नए महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन को लेकर, साथ में हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को लेकर। जैसा कि सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें अंजलि, तो जैसा कि आपने कहा था कि सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: जी हाँ।
0: साथ ही प्रेरणादायक वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है अंजलि कि यदि मन में दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कठिन परिश्रम हो तो साधारण परिवार का एक बालक भी देश का सर्वोच्च नागरिक बन सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के हर युवा के लिए आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और स्वावलंबन का संदेश है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत के उस महान व्यक्ति की जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा और सादगी से पूरी दुनिया का दिल जीता।
0: बिल्कुल,
1: केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उत्कृष्ट शिक्षक और भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति भी थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की।
0: बिल्कुल।
1: उनका जीवन श्रोता साथियों हमें सिखाता है कि यदि मन में बड़ा लक्ष्य, मेहनत करने की साहस और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो साधारण परिस्थितियों से निकल कर भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है।
0: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि आपने बताया कि वे विज्ञान, शिक्षा, नैतिकता और मानवता के अद्भुत संगम थे, इसीलिए उन्हें स्नेह पूर्वक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का कार्य करते थे अंजलि, और मार 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का कार्य करते थे अंजलि, और माता आशियम्मा एक सरल, दयालु एवं धार्मिक महिला थी।
1: बिल्कुल।
0: परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था लेकिन संस्कारों और ईमानदारी की समृद्धि थी। बचपन से ही कलाम साहब अनुशासन प्रिय, जिज्ञासु और मेहनती थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहते हैं कि गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मान लेना सपनों को रोक देता है। श्रोता साथियों, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना था कि वे देश के लिए कुछ

0: ऐसा करें जिससे भारत विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसके बाद उन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे ISRO और DRDO जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कारण उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में सम्मान मिला।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम उनके जीवन के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो उनका संघर्षपूर्ण बचपन, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही समाचार पत्र बांटने का कार्य किया था।
0: बिल्कुल।
1: सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, अखबार वितरित करना और फिर विद्यालय जाना उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके लिए हर कठिनाई एक सीख थी। एक संवाद है जो हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे।
0: जी हाँ।
1: उनके मित्र और कलाम साहब के बीच में, उनके मित्र ने कहा कि कलाम तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तब कलाम जी ने कहा, क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों से नहीं अपने सपनों से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ।
0: जी हाँ।
1: तभी उनके मित्र ने कहा, अगर रास्ता कठिन हुआ तो? तभी कलाम साहब ने कहा कि कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत सरल रहा। वे बच्चों और युवाओं से मिलना, उन्हें प्रेरित करना और शिक्षा का महत्व समझाना कभी नहीं भूले। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। उनका विश्वास था कि युवा ही भारत का भविष्य है।
1: बिल्कुल।
0: वे हमेशा कहते थे जागृति जी कि हर युवा को बड़ा सपना दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े लक्ष्य बनते हैं और बड़े लक्ष्य ही राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। 27 जुलाई 2015 को वे विद्यार्थियों को संबोधित करते समय मंच पर ही गिर पड़े और उनका निधन हो गया। जीवन का अंतिम क्षण भी उन्होंने शिक्षा और युवाओं को ही समर्पित किया।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ जैसे कि युवाओं के लिए उन्होंने समर्पित किया, ये बात आपने बताई, तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर कलाम मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। वो कहते थे कि यदि हर युवा अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर मेहनत करे तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने हजारों विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रेरित किया। एक बार उनके विद्यार्थी और डॉक्टर कलाम साहब के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
0: जी जी।
1: तभी डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि बड़ा सपना देखो। तभी विद्यार्थी बोला कि केवल सपना? तब डॉक्टर कलाम साहब बोले कि सपना, मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने का साहस, यही सफलता के सूत्र है।
0: जी हाँ।
1: और व्यक्तित्व की विशेषताओं को लेकर बात करें उनके, तो उनमें अद्भुत सादगी थी, ईमानदारी थी, अनुशासन था, राष्ट्रभक्ति थी, विनम्रता, वैज्ञानिक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति समर्पण थे।
0: बिल्कुल।
1: वे हमेशा कहते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो समाज के काम आए।
0: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि सादगी, मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं श्रोता साथियों, बल्कि वह प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों युवाओं के दिलों में जगाई।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने बताया है कि सपनों को लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को कर्म बनाइए और कर्म को अपनी पहचान बनाइए। जो युवा सीखना नहीं छोड़ता वही जीवन में आगे बढ़ता है। महानता जन्म से नहीं मिलती है श्रोता साथियों, बल्कि अच्छे विचार, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, 27 जुलाई 2015 को वे मेघालय के शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और व्याख्यान देते समय ही उन्हें हृदयघात आया और उनका निधन हो गया।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने अंतिम क्षण तक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन भारतीय युवाओं के लिए आशा, संघर्ष और सफलता की अमर गाथा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सीमित संसाधन किसी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम के बल पर कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है।
0: बिल्कुल।
1: बस आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल उनके विचारों की प्रशंसा न करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। अगर प्रत्येक युवा डॉक्टर कलाम जी के आदर्शों को अपनाएगा अंजलि, तो भारत न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। कहा गया है कि सपनों को लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को कर्म बनाइए और कर्म को राष्ट्र सेवा से जोड़ दीजिए। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि जागृति जी ये हमने जाना कार्यक्रम के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को, आगे हम कार्यक्रम में जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। लेकिन अभी दोस्तों को क्यों न प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, जिस समाज की कलम जागती है वही समाज आगे बढ़ता है। महान लेखक केवल कहानियां नहीं लिखते, वे समाज की सोच और भविष्य भी करते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, हर वर्ष 31 जुलाई को ही उनकी जयंती मनाई जाती है। यह अवसर

0: प्रेम का गहरा संदेश मिलता है।
1: जी हाँ,
0: आज भी प्रेमचंद की रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे भारतीय साहित्य के ऐसे सूर्य हैं जिनकी किरणें हर पीढ़ी को नई दिशा देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गाँव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बाद में उन्होंने प्रेमचंद्र नाम से लेखन किया और इसी नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। उनके पिता अजायब राय डाक विभाग में कर्मचारी थे और माता आनंदी देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव और संघर्ष में बीता। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था और कुछ वर्षों बाद उनके पिता भी चल बसे। कम उम्र में ही जागृति जी उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। वे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते थे और पुस्तकों से गहरा लगाव रखते थे और यही लगन श्रोता साथियों आगे चलकर उन्हें भारत के महान साहित्यकारों में शामिल कर गई।
0: बिल्कुल अंजलि, प्रेमचंद जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही वे अनेक प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ने लगे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में वे विद्यालय निरीक्षक भी बने, लेकिन उनका मन हमेशा साहित्य और समाज सेवा में लगा रहता था। श्रोता साथियों, प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उनकी पहली देशभक्ति से प्रेरित पुस्तक सोच ए वतन अंग्रेजी शासन को पसंद नहीं आई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया और यही नाम आगे चलकर अमर हो गया।
1: बिल्कुल जागृति जी, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ और अनेक उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इन रचनाओं में केवल कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए गहरा संदेश छिपा है। उन्होंने किसानों की मेहनत, गरीबों के संघर्ष, महिलाओं की पीड़ा और इंसानियत के मूल्यों को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र मानते थे कि शिक्षा, ईमानदारी और मानवता किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल,
1: चाहते थे श्रोता साथियों कि समाज में सभी को सम्मान मिले और कोई भी व्यक्ति गरीबी, भेदभाव या अन्याय का शिकार न हो। उनकी लेखनी ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। जागृति जी, कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति के साथ न्याय और समानता का व्यवहार हो।
0: प्रेमचंद जी को उनके जीवन काल में भले ही अधिक आर्थिक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन साहित्य जगत में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। श्रोताओं, लगातार आर्थिक कठिनाइयों और अव्यवस्था के बावजूद प्रेमचंद लिखते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे ऐसा साहित्य छोड़ा जो आज भी समाज को नई दिशा देता है। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह नहीं रोक सकती। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा के कथाकार थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उन लोगों की आवाज को शब्द दिए जिनकी पीड़ा अक्सर अनसुनी रह जाती थी। उनका जीवन संघर्ष, सादगी, सामाजिक चेतना और राष्ट्र प्रेम का प्रेरक उदाहरण है। आज जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब प्रेमचंद की रचनाएं हमें संवेदनशील बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। उनकी कलम ने जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं श्रोताओं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अंत में श्रोता साथियों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अच्छी पुस्तकें जीवन की सबसे सच्ची मित्र होती है।
0: बिल्कुल,
1: जो समाज अपने साहित्य और संस्कृति का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है। महापुरुषों के विचार समय के साथ पुराने नहीं होते, वे हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं।
0: बिल्कुल,

0: इस गीत के साथ ही श्रोता साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताती हूँ जो कि हमारे जीवन से जुड़ी होती है और कई बार हमारे युवा साथी तनाव में आ जाते हैं तो ऐसी कहानियाँ सुनकर उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज भी मैं हाजिर हूँ एक ऐसी ही कहानी को लेकर आपके समक्ष। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में हमारा कार्यक्रम का दस्तूर है कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत सुनवाते हैं। तो पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का शीर्षक है नीम का आंगन, जी हाँ, जो कि जीवन मूल्यों और प्रेरणा का प्रतीक है। दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृति में आंगन का विशेष महत्व रहा है। आंगन केवल घर का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि परिवार, संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों का केंद्र होता है। जब आंगन में नीम का पेड़ हो तो उसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। नीम का पेड़ अपनी छाया, औषधीय गुणों और लंबे जीवन के कारण केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन का शिक्षक बन जाता है। नीम का आंगन हमें धैर्य, संघर्ष, सेवा, त्याग और सकारात्मक सोच का संदेश भी देता है। आज जब आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तब नीम का आंगन हमें अपनी जड़ों और मूल्यों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको बताया कि नीम का आंगन, जो कि जीवन मूल्य और प्रेरणा का प्रतीक है। हम देखते हैं कि पेड़ों से जो मनुष्य को मिलता है उसकी कद्र इसीलिए नहीं है क्योंकि पेड़ पलटकर जवाब तलब नहीं करते। आज की कहानी है एक गाँव की और उस गांव में है सरोज। सरोज की तरह जो उनकी कीमत जानते हैं, वे ही उसे पार्किंग के लिए जगह बनाने के नाम पर काटे जाने की राह में खड़े मिलेंगे। शुरू होती है इस तरह से दोस्तों कहानी। गांव के इस पुराने घर में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी भी कहते थे जब हम छोटे थे तब भी ये इतना ही बड़ा था। उस नीम के नीचे ही घर की सारी जिंदगी बीतती थी। सुबह वही चाय बनती, दोपहर में वही खाट बिछती और रात को उसी के नीचे बैठकर लोग गर्मियों में तारे गिना करते। और उसी नीम से सबसे ज्यादा लगाव था सरोज को। दोस्तों, सरोज इस घर की बड़ी बहू थी। सांवला चेहरा, शांत आंखें और हमेशा काम में लगी रहने वाली औरत, जिसे पूरे घर में सबकी पसंद याद रहती थी। किसे पत्ती रोटी चाहिए, किसे दाल में घी ज्यादा पसंद है और कौन बिना चाय के सुबह बात तक नहीं करता। पर उसकी पसंद क्या थी ये किसी ने कभी नहीं पूछी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी तब उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल ही रही होगी। डोली से उतरते ही उसने सबसे पहले इसी नीम को देखा था। उसकी सांस ने हंसते हुए कहा था, इस पेड़ की तरह जड़े जमा लेना इस घर में। और सचमुच सरोज ने अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में रोप दी। पति महेश शहर में नौकरी करते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे, रात को थके हुए लौटते थे, बातें कम ही हो पाती थी। धीरे धीरे सरोज की दुनिया रसोई, आंगन और उस नीम तक सिमट गई। समय बीता गया दोस्तों, दो बैठे हुए घर की बेटियां भी ब्याह कर चली गई। घर में नई चीजें आने लगी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, पर नीम वही खड़ा रहा। और सरोज भी अब उसके बालों में सफेदी उतर आई थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था, फिर भी सुबह सबसे पहले वही उठती थी, नीम के नीचे झाड़ू लगाती, उसकी सूखी पत्तियां समेटती और हर दिन उससे बातें करती। देखो सब कितने बड़े हो गए हैं। एक दिन श्रोताओं, बड़े बेटे ने कहा, माँ इस नीम को कटवा देते हैं। जैसे ही बड़े बेटे ने कहा दोस्तों, सरोज एकदम से चौंक गई और बोली, क्यों? बेटे ने बोला, बहुत गंदगी फैलाता है, पत्तियां गिरती रहती है और कार खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। सरोज उस समय चुप हो गई दोस्तों। उसने पहली बार महसूस किया कि अब घर बदल चुका है, अब लोगों को छांव नहीं पार्किंग चाहिए। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई, खिड़की से बाहर नीम को देखती रही। हवा चलती तो उसकी डालियां धीरे धीरे हिलती, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खामोशी से सिर हिला रहा हो। उसे लगा वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी था। जिस तरह नीम ने बिना शिकायत सबको छांव दी, उसी तरह सरोज ने भी तो सबको सब कुछ दिया था, अपना समय दिया था, अपनी इच्छाएं और अपना पूरा जीवन, और अब दोनों ही बेकार समझे जा रहे थे। अगली सुबह मजदूर आए कुल्हाड़ी और मशीन लेकर। श्रोताओं, सरोज आंगन में खड़ी थी, उसकी आंखें नीम पर टिकी थी। बेटे ने कहा, माँ हट जाओ, पर वो वहीं खड़ी रही। उसने कहा, पहले मुझे हटाओ। जैसे ही सरोज ने ऐसा बोला कि पहले मुझे हटाओ, घर में एकदम सन्नाटा छा गया दोस्तों। महेश ने पहली बार पत्नी की आंखों में इतने सालों का जमा हुआ दर्द देखा था। सरोज बोली, जब मैं इस घर में आई थी ना, तब ये नीम सबसे पहले मुझे मिला था। तुम
सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे, पर मैंने अपनी बातें इसी से करी है। जब पहली बार मायके की याद में रोई थी, तब इसके नीचे बैठकर ही रोई थी। जब बच्चों को बुखार आता था, तब इसकी छांव में रातें काटी है। जब तुम्हारे पिताजी शहर काम करने गए, तब इसी तने से लगकर रोई थी मैं। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें सिर्फ पत्तियां दिखती है, मुझे पूरा घर दिखता है इसमें। बड़ा बेटा चुप हो गया। दोस्तों, उसने पहली बार अपनी माँ को माँ नहीं, एक इंसान की तरह देखा। एक ऐसी औरत जिसने बिना कुछ मांगे सब दे दिया था। मजदूर वापस चले गए, निम बच गया। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया था। अब शाम को बेटे भी कभी कभी नीम के नीचे बैठने लगे थे, पोते उसकी डालियों पर झूला डालते, और सरोज वो अब पहले से थोड़ी ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। एक शाम छोटा पोता उसके पास आकर बोला, दादी ये नीम इतना जरूरी क्यों है? तब सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा कुछ चीजें सिर्फ छांव नहीं देती, घर को घर बनाए रखती है। नीम की छांव बच गई थी, आंगन का पेड़ घर की पहचान बनी रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी आंगन का नीम। आगे इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी सुनाई थी आंगन का नीम, दोस्तों जैसे नीम का आंगन और जीवन की सीख इस पर बात करें तो नीम का आंगन केवल एक स्थान नहीं है बल्कि जीवन की पाठशाला है। इसकी छाया में बैठकर व्यक्ति शांति और सुकून का अनुभव करता है जैसे कि सरोज ने किया था। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। नीम का पेड़ वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ता है, वो एक दिन में विशाल नहीं बन जाता। उसी प्रकार सफलता भी हमें धीरे धीरे मिलती है, मेहनत लगन और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। नीम का पेड़ हर मौसम का सामना करता है। हम देखते भी हैं कि गर्मी की तपती धूप, सर्दी की ठिठुरन और वर्षा की तेज बौछार भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। और यही संदेश मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जीवन में समस्या आती है, चुनौतियाँ आती रहती है, कभी आर्थिक कठिनाइयाँ भी होती है, कभी असफलताएं भी हमें मिलती है तो कभी निराशा भी घेर लेती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति नीम की तरह अड़िग रहे तो वो हर संकट को पार कर सकता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। नीम का पेड़ बिना किसी स्वार्थ के सबको लाभ पहुंचाता है, ये आप और मैं भी देखते हैं। वो ये नहीं देखता कि उसके छाया में कौन बैठा है, वो सभी को समान रूप से शीतलता प्रदान करता है। और आज के समय में जब हम देखते हैं कि स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है तब नीम का आंगन हमें परोपकार और सेवा की सीख देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की सहायता करने लगे तो समाज में प्रेम, सहयोग, भाईचारे की भावना मजबूत होने लगेगी। आज हम देखते हैं श्रोता साथियों कि युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, प्रतियोगिता है, बेरोजगारी है और असफलताएं जैसी समस्या है उन्हें परेशान करती है। ऐसे समय में नीम का आंगन एक प्रेरणा बन सकता है। नीम का आंगन केवल एक पेड़ और एक स्थान का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण मूल्यों का प्रतीक है। ये हमें धैर्य सिखाता है, जैसा कि हमने आपको कहा था, संघर्ष करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है, परोपकार करना सिखाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। नीम की तरह हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि हम स्वयं मजबूत बने और दूसरों के लिए सहारा बने। आज आवश्यकता इसी बात की श्रोता साथियों कि हम प्रकृति से जुड़े, अपने संस्कारों को अपनाएं और जीवन में मेहनत तथा धैर्य को स्थान दें, तभी हम एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके भी आंगन में नीम का पेड़ है तो उसे कभी मत हटाइएगा। जिस तरह सरोज ने विरोध किया है वैसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही पेड़ हमें धैर्य भी सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीम का आंगन। अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार साथी, आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: हमरो हमरो हमरो घणी बोले पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मलिने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्ही दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, पहली कहानी है हमारी नन्ना दीपक और सच्चाई की जीत। जी हाँ बच्चों, एक समय की बात है, पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। दीपक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान अमीर या गरीब अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अच्छे चरित्र से बनता है। बच्चों, दीपक रोज सुबह उठता, माता पिता की मदद करता, स्कूल जाता और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता। दीपक पढ़ाई में अच्छा था और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूरे गांव में लोग उसे अच्छे व्यवहार के कारण बहुत पसंद करते थे। एक दिन बच्चों, स्कूल से घर लौटते समय दीपक को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा, बटुए में बहुत सारे पैसे थे, कुछ जरूरी कागज थे और एक पहचान पत्र भी था। उसके दोस्त मोहन ने कहा, दीपक, इतने सारे पैसे, चलो इससे खिलौना और मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। दीपक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में नए जूते और स्कूल का बैग खरीदने की इच्छा आई। लेकिन बच्चों, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उसने अपने दोस्त से कहा, नहीं मोहन, यह पैसा हमारा नहीं है, जिसने इसे खोया होगा वह बहुत परेशान होगा, हमें इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। दोनों बच्चे पहचान पत्र में लिखी उस पते के अनुसार उस व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी देर पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे। जैसे ही बुजुर्ग ने अपना बटवा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पूरे दिन से इसे ढूंढ रहा था, इसमें मेरी दवाइयों के पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, अगर यह नहीं मिलता तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती। बुजुर्ग ने खुशी खुशी दीपक को इनाम देना चाहा, लेकिन बच्चों, दीपक ने विनम्रता से कहा, दादाजी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो केवल आपकी चीज आपको लौटाई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मुझे केवल मेरा बटवा नहीं लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने अगले दिन ग्राम सभा में दीपक को बुलाया, सबके सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सम्मान पत्र भी दिया गया। स्कूल में भी प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को दीपक की कहानी सुनाई और कहा, बच्चों, शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, अच्छे संस्कार भी सबसे बड़ी शिक्षा है। उस दिन के बाद बच्चों, गांव के बच्चे दीपक को अपना आदर्श मानने लगे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों की चीज उठाने से बचने लगे। अगर किसी को रास्ते में कुछ सामान मिलता तो वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते। कुछ महीनों बाद गांव में तेज बारिश हुई, कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीपक और उसके दोस्त ने मिलकर लोगों की मदद की, किसी के घर राशन पहुंचाया, किसी के लिए दवा लाई तो किसी के बच्चों की देखभाल की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस बच्चे के मन में ईमानदारी होती है उसके मन में सेवा का भाव भी अपने आप ही आ जाता है। बच्चों, समय बीतता गया, दीपक बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर एक शिक्षक बना। वह अपने विद्यालय में बच्चों को हमेशा यही सिखाता कि अपने जीवन में धन से बड़ा चरित्र होता है। वह कहता, अगर आपके पास सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बने। लेकिन बच्चों, सभी के मन में दीपक की एक बात हमेशा याद रही, गलत रास्ता आसान जरूर हो सकता है, लेकिन सही रास्ता ही जीवन को सम्मान देता है। आज भी बच्चों, उस गांव में जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है
तो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो हमारे दीपक की सीख का असर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सही काम करने से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों मिलते हैं। अच्छे संस्कार जीवन भर बच्चों हमारे साथ रहते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साथ ही बच्चों, सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। एक अच्छे बच्चे का व्यवहार पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नन्हा अर्जुन और दया का पेड़। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दयालु स्वभाव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के बच्चे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। अर्जुन के घर के सामने एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बच्चे

राहगीरों को छाया कौन देगा? गर्मियों में बच्चों को ठंडी जगह कहाँ मिलेगी? अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर पेड़ के नीचे सफाई की, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए और एक तख्ती पर लिखा, पेड़ हमारी सांस है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। अर्जुन ने सबको समझाया कि पेड़ केवल फल नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, छाया और जीवन भी देता है। इसी बीच बच्चों, गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी, कई छोटे पौधे सूख गए। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें पानी देता। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि हर बच्चा एक पौधे की जिम्मेदारी ले। कुछ दिनों बाद गांव में एक घायल तोता मिला, उसके पंख में चोट लगी थी। बच्चे उसे देखकर डर गए, लेकिन अर्जुन उसे धीरे से घर ले आया। उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे दाना दिया और पानी दिया। लगभग बच्चे 2 सप्ताह बाद तोता पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से खुले आसमान में उड़ गया। बच्चों, यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आया कि छोटे छोटे दयालु काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद तेज आंधी आई, गांव के कई पेड़ गिर गए, लेकिन वही पुराना आम का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। उसने कई लोगों को गिरती शाखाओं और तेज धूप से बचाया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि उन्होंने इसे काट दिया होता तो आज यह सब संभव नहीं होता। बच्चों, फिर ग्राम सभा बुलाई गई। सरपंच ने कहा, आज से हमारे गांव में बिना कारण के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हर परिवार हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएगा। उसी दिन अर्जुन को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया बच्चों, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान मेरा नहीं, इस पेड़ का है, इसने हमें जीना सिखाया है। उसकी यह बात सभी के दिलों को छू गई। अब गांव के बच्चे हर रविवार को मिलकर पौधे लगाने लगे, उनकी देखभाल करते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। कुछ वर्षों बाद वह गांव दूर दूर तक हरा भरा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर देखते कि छोटे बच्चों ने अपने अच्छे कामों से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता, उसे सबसे पहले उस पुराने आम के पेड़ के पास ले जाया जाता और अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। बच्चे प्रेरित होकर कहते, हम भी प्रकृति की रक्षा करेंगे और सभी जीवों से प्रेम करेंगे। आज भी बच्चों, उस गांव में हर वर्ष वृक्ष मित्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन बच्चे पौधे लगाते हैं, पेड़ों की सफाई करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। दया और करुणा हर जीव के प्रति होनी चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों, प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता बच्चों, दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटने में है। एक जागरूक बच्चा पूरे गांव की सोच बदल सकता है। आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में, आपकी अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नहीं दिलू की अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलो की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, दुनिया एक दिन आप पर भरोसा करेगी। जी हाँ, मुश्किलें आपको रोकने नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो मंजिल पे झुककर आपका स्वागत करती है।

0: गीत के बाद साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से हाजिर होते हैं तो एक नई शख्सियत के जीवन परिचय को लेकर आते हैं। तो आज भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत अवश्य जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: मैं भी आपका बहुत बहुत आभार महसूस करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उन सभी सुनने वालों का और आपके वागड़ रेडियो स्टेशन का।
0: बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं और जैसा कि हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से हम हर रविवार को एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, उनके जीवन परिचय से रूबरू होते हैं, उनके संघर्षों के बारे में जानते हैं और साथ ही जीवन की नई प्रेरणाओं को लेकर हमारे जीवन में किन चीजों का हमें बदलाव करने की जरूरत है इस बारे में सोच विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में मैम मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी हाँ, मैं डॉक्टर सुनीता हूँ। मैंने नेचुरोपैथी में कोर्स किया और बेसिकली मेरी जो एजुकेशन थी वो फाइन आर्ट्स से थी और मुझे हमेशा लगता था कि फाइन आर्ट्स में तो मैं क्या है, रोज स्कल्पचर्स बनाऊंगी, कुछ डिजाइंस करूंगी, लेकिन इसका लोगों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है?
0: बिल्कुल
1: कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि मुझे इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: मैंने वो फाइन आर्ट्स में बहुत पैसा कमाती, बहुत कुछ था लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव नहीं था।
0: जी जी।
1: तो इस फील्ड में आई और इस फील्ड में आने का मेरा एक और पर्पस था। मेरे छोटे बेटे को हर 5 दिन 7 दिन में ब्लीडिंग होती थी नाक से, तो समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को बहुत दिखाया, वो तब तकरीबन 4-5 महीने का रहा होगा, 4-5 महीने से लेके और 5-6 साल तक उसको ऐसा होता रहा। तो हर 15 दिन में, हर 7 दिन में अगर ब्लीडिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है।
0: जी जी।
1: डॉक्टर्स को दिखाने से ठीक नहीं हो रहा था, तो इसी पर्पस से मैं फिर इस फील्ड में आई कि मैं ना केवल अपने बच्चे को, अपने परिवार को, बल्कि लोगों को भी बहुत सारी समस्याएं, तो माओं को कितनी ज्यादा समस्याएं होती होंगी, इसलिए इस क्षेत्र में आई।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था सबसे बड़ा रीजन।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने आपका रीजन बताया कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आई, यही मैं जानना चाहूंगी कि आपने योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने के लिए जो प्रेरणा ली है उसके साथ ही आपका सफर इस क्षेत्र में कैसा रहा, कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता हो?
1: हाँ, मेरे 2 अनुभव है जो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। एक है, एक मेरी क्लाइंट नहीं कहूंगी मेरी पेशेंट थी, उनको ओवेरियन कैंसर डिक्लेयर हुआ। पैट टेस्ट कराया तो उसमें पता चला, पेपस्मेयर कराया उसमें भी पता चला, बहुत सारी चीजों में, उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तभी पता चला कि हाँ उनको कैंसर है।
0: जी जी।
1: डायग्नोस हुआ, अल्ट्रासाउंड की वो रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आई और पीरियड्स उनको हो नहीं रहे थे, तकरीबन 2 साल हो गए थे कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। बेसिकली तो वो अपने पीरियड्स की वजह से आई थी।
0: बिल्कुल।
1: और जो उनके पास रिपोर्ट्स थी, एक महिला जो नहीं जानती है पढ़ना लिखना या डॉक्टर्स की चीजें, नो डाउट कि डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर आम आदमी तो नहीं समझता है कि डॉक्टर ने क्या देखा। वो रिपोर्ट लेके आई तो उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, 2 साल से मिसिंग है। मैंने कहा चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं।
0: जी जी।
1: तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ट्राई नहीं चाहिए, मुझे उपचार चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: मैंने कहा ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, तो एक मिरेकल हो सकता है प्रकृति माँ ने ऐसा सोच रखा हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज हम मिले हैं। मैंने उनका इलाज शुरू किया और 6-7 महीने के बाद जब हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनका जो कैंसर था वो रिमूव हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चला। ट्रीटमेंट के 5-6 दिन बाद उनको महावारी भी आई और फिर तब से वो रेगुलर रही। मैं उनको कटे स्नान देती थी, सनलाइट से उनका ट्रीटमेंट करती थी, सनलाइट से भी ब्लू एंड रेड कलर का उसमें टाइमिंग्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में, मैंने जब सनराइज होता है तब से लेके और 8 बजे तक मैं उनको सनलाइट देती थी और टाइमिंग्स के साथ देती थी। सनलाइट में तैयार किए हुए ऑइंटमेंट उनको दिए गए, सनलाइट में तैयार किया हुआ ही भोजन, पानी उनको हमने दिया और 6 महीने के बाद जब रिजल्ट देखा तो वो कैंसर नहीं था।
0: जी जी।
1: एक मेरी जिंदगी में ये बहुत करीब है और एक है जिनका मेरी फ्रेंड थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पूरा चेहरा मैंने पूरे राइट साइड के चेहरे पर पूरा ब्लड आ गया, तो ब्लू हो गया
0: बिल्कुल।
1: आप जानती हैं अंदर चोट लगती है तो वो जगह ब्लू
0: हो जाती है बिल्कुल।
1: डॉक्टर्स को दिखाया तो जब मेरे पास आई तो उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं और मेरा चेहरा पूरा
0: ब्लू
1: है। तो उनको अगेन सनलाइट से ही ट्रीटमेंट दिया और जब वो ठीक हुई तकरीबन 1.5 महीना लगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो गई। आज वो यूएस में रहती हैं।
0: बिल्कुल मैम, आपके जो अनुभव हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और यादगार अनुभव हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो दोनों ही समस्या है वो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक महिला के लिए अपना चेहरा बहुत ही
1: मायने
0: रखता है बिल्कुल, क्योंकि उनकी सुंदरता उनके चेहरे से, उनके बालों से, उनके स्वस्थ शरीर से ही होती है। और दूसरी जिन महिला का आपने बात की है और उनके लिए भी ये जो चीज थी वो बहुत ही बड़ी थी, और आपके माध्यम से उन चीजों का और प्राकृतिक तौर पे इन चीजों का निवारण हुआ है।
1: मां प्रकृति की वजह से या उनकी प्रकृति के साथ रहने से ठीक हुई।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने व्यस्त जीवन में अपनी दिनचर्या को स्वास्थ्य की जो चीजें हैं उन्हें कैसे महत्व दिया, अभी आप इस समय में क्या करती हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखती हैं?
1: मैं इस समय हेल्थ कोचिंग करती हूँ और चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी लाइफ, देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है
0: बिल्कुल,
1: है ना। अब ये नहीं कहेंगे कि सारी बीमारियां जेनेटिकल है,
0: बिल्कुल
1: डायबिटीज जेनेटिकल नहीं है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। थायराइड अगेन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, यानी हम जैसा जीवन जी रहे हैं उससे संबंधित हमारे जीवन में बीमारियां शामिल हो गई है। केवल खान पान या रासायनिक

0: चीजों के इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं हो रहा है
1: जी हाँ।
0: ये हम कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम योग करते हैं कि नहीं करते हैं, शारीरिक गतिविधियां होती है नहीं होती है,
1: बिल्कुल,
0: हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे इमोशनल रिलेशंस कैसे
1: हैं, बिल्कुल,
0: ये जो 6-7 चीजें हैं ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: अगर ये नेगेटिव हो गई तो हम बीमार होते हैं, अगर ये पॉजिटिव रही तो हम बढ़िया रहते हैं। बैलेंस रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें, अपने सोच को पॉजिटिव रखो।
1: बिल्कुल,
0: हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा शरीर भी पॉजिटिव रिस्पांस देता है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो मैंने अपने जीवन को इस तरह से संतुलित बनाए रखा है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सूर्य भगवान को सबसे पहले नमस्कार करती हूँ और दोनों हाथों में भर के, अरे यूँ तो सूरज को कोई बाहों में नहीं भर सकता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोनों हाथ फैला के और सर ऊपर करके जब गहरी सांस लेती हूँ तो मुझे लगता है कि सूरज की जितनी ऊर्जा है वो मुझ में भर गई और मेरे अंदर से जितनी भी खराब चीजें हैं वो सूर्य भगवान की जो गर्मी और एनर्जी मेरे अंदर की उसे वो खत्म हो गई और पूरा खराब चीजें बाहर आ गई और अच्छी चीजें मेरे शरीर के अंदर आ गई है। तो मेरे दिन की शुरुआत इस तरह से होती है। इसको चलाते रहने के लिए मैंने जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के साथ
1: जुड़े
0: हैं, जुड़ा हुआ है, इनको हम अलग करके नहीं
1: देख सकते। जी जी।
0: तो इतनी सारी चीजों के बीच में अपने आप को जैसे शुरू किया, मैंने आपको बताया कि मैं सूर्य दर्शन करती हूँ सुबह सुबह, जीरे का पानी पीती हूँ, रात को जीरा भिगोती हूँ और सुबह छान कर पीती हूँ और जीरे को फिर से सुखा देती हूँ ताकि वो मेरी सब्जी में, रायते में, इसमें मैं उसको यूज कर सकूँ और नया जीरा मैं भिगो कर काम में लेती हूँ। चाय मैं पीती नहीं हूँ, मैंने चाय को डिवोर्स दिया हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: लोग अपने पति पत्नी को डिवोर्स देते हैं जिन चीजों की
1: जी जी,
0: मैं उन सबसे दूर हूँ।
1: बिल्कुल।
0: मुझे लगा चाय वो चीज है जिसको तलाक दिया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम।
0: और मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है ना, आज की तारीख में कहीं भी जाओ तो लोग कहेंगे अरे चाय पी लो, अमृत है आज का।
1: बिल्कुल।
0: और मुझे ये अमृत स्वीकार्य नहीं, तो नहीं पीती हूँ। इसकी जगह पर मैं रात को भिगोया हुआ बादाम लेती हूँ, 5 बादाम भिगोती हूँ, 2 अंजीर होते हैं भीगे हुए, 5 मुनक्का होता है,
1: बिल्कुल,
0: 2 अखरोट होते हैं, तो इन सबको मैं भिगो देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अखरोट मैं नहीं भी भिगोती हूँ लेकिन बाकी चीजें भिगोती हूँ, मुनक्का और अंजीर जिसमें भिगोया वो पानी पीती हूँ और मुनक्का अंजीर खा लेती हूँ, बादाम और अखरोट खाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: ये ऐसी चीज है जो मुझे काफी टाइम तक एनर्जी देती है। अब लोग ये कहते हैं कि भाई इतना तो हमसे नहीं होगा।
1: बिल्कुल मैम।
0: क्यों नहीं होगा, आसानी से हो सकता है। अभी मैं कहीं भी टूर पे जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ लेकिन अपने साथ सारी चीजें रखते
1: हैं।
0: आप जहाँ भी जाओगे आपके पास है, वो कहते हैं ना बगल में तोसा किसका भरोसा।
1: बिल्कुल।
0: आपके पास सामान है, आपकी चीज है।
1: जी जी।
0: तो आपको सिर्फ एक बर्तन चाहिए और कुछ नहीं। तो इस तरह मैं अपनी चीजें मैनेज करती हूँ और नियम बनाया हुआ है कि एज हेल्थ कोच जब मैं दूसरों को बस सिखाती हूँ कि आपको अपने खाने में 50% प्रोटीन,
1: बिल्कुल,
0: 25% फाइबर और 25% ही कार्ब्स लेना चाहिए।
1: जी जी।
0: अगर मैं आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के खाने के बारे में पूछूं, सही कार्ब्स लेना चाहिए।
1: जी जी।
0: अगर मैं आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के खाने के बारे में पूछूं कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो और एनालाइज करो तो आप ताज्जुब करेंगी कि उनके खाने में 90% कार्ब्स होता है।
1: बिल्कुल।
0: प्रोटीन होता है तो मिसिंग होता है, फाइबर तो होता ही नहीं है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो अगर हम ये खाएंगे तो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने खाने में खाने से पहले, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते तो एक प्रैक्टिस शुरू कर लें।
1: बिल्कुल।
0: कि खाना जब खाने बैठे तो कोई भी मूल जड़ वाली चीज है ना, गाजर हो सकती है, मूली हो सकती है, आप वहां से शुरू करें।
1: जी जी।
0: आप गाजर ही खा लें, दो आप दो टमाटर ही खा लें खाना खाने से पहले।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शुरुआत तो करें।
1: बिल्कुल मैम।
0: और मेरे से आप खाने की बात पूछेंगे तो एक मैं बड़ा बाउल भर के सलाद खाती हूँ, फिर चना खाती हूँ, मैंने प्रोटीन की चीजें खाती हूँ, दाल खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि अभी कुछ भूख बची है
1: जी जी
0: तो फिर मैं चपाती खाती हूँ, नहीं तो
1: नहीं खाती है। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने आपकी दिनचर्या हमें बताई है जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, अगर हमारे सभी श्रोता साथी, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि अभी के समय में जो बहुत ज्यादा बीमारियां पड़ रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो इन सारी चीजों का समाधान हो सकता है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम सुरक्षित बनाकर रख सकते हैं। यही अब मैम मैं आपके जीवन का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जानना चाहूंगी जब आपके सामने चुनौती आई होगी।

0: समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ा, लेकिन आपने अपने जीवन में समस्या का समाधान किया और वहाँ से आप आगे निकले।
1: हाँ, मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, शायद मैं पहली बार ये बात बता रही हूँ, जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल।
1: मीन्स एक लड़की की जिंदगी की शुरुआत तब मानी जाती है जब उसकी शादी होती है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो शादी के कुछ दिनों तक, शादी से पहले मैं जॉब कर रही थी, और शादी के बाद तय हुआ कि मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे इन लॉज के यहीं रहना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: इन लॉज बहुत पैसे वाले थे, मेरी जो पेरेंटल फैमिली है वो भी बहुत पैसे वाली थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उनसे पैसा लेके अपनी जिंदगी चलाऊंगी तो कितने दिन।
0: बिल्कुल मैम।
1: ये सोच के फिर हम हस्बैंड वाइफ ने तय क्या किया, मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने ही कहा कि भैया अब तुम यहाँ से अपनी बीवी को ले जाओ और जैसे जिंदगी चलानी है चलाओ।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो मैंने जैसा बताया कि मैं जॉब कर रही थी फाइन आर्ट्स में, बहुत बढ़िया मेरा अच्छा ब्रेकअप मुझे मिला था।
0: बिल्कुल।
1: तो साल भर का जो पैसा इकट्ठा था हमने बड़ी मौज शौक में उसे निकाल दिया। शादी के बाद सपने बहुत सारे होते हैं, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, इतना खाएंगे
0: जी,
1: वैसे
0: जी, बिल्कुल
1: खाएंगे। तो उसमें पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने वो एक साल गुजर गया, पैसे खत्म हो गए, अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 29 रुपए 25 पैसे बचे। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, यार यहाँ तो कोई जॉब ही नहीं है जयपुर में, क्योंकि हम भरतपुर से यहाँ आए थे।
0: बिल्कुल।
1: मैं जयपुर की रहने वाली थी तो कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स मेरे काम से रिलेटेड थे, अब उनके काम से रिलेटेड मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कहा तो एक जगह काम मिला, और फाइन आर्ट्स का ही काम था, मुझे ब्लू पॉटरी में कुछ वर्क करना था। मैं अपने जिनके थ्रू काम मिला था उनके थ्रू जिन्होंने काम दिया था वहाँ जाके मिली, और पहली बार जाके मैंने कहा कि सर ऐसा है मेरे पास पैसे तो है नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और मैं आपका काम करके दे दूंगी, लेकिन मुझे एडवांस चाहिए।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो आप सोचिए उस समय जब कोई फ्रेशर हो और उसको कोई एडवांस पैसा दे, ऐसा कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो पहले तो यही तय हुआ कि वहां तक जाने के लिए हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो उस जमाने में 25 रुपए लीटर पेट्रोल आया करता था।
0: बिल्कुल।
1: अब वो 29 रुपए 25 पैसे में से हम अपनी गाड़ी को, यानी स्कूटर था मेरे पास, उसको हम घसीट के पेट्रोल पंप तक लेके गए।
0: जी जी।
1: 25 रुपए का पेट्रोल डल गया, बाकी मुझे 4 रुपए 25 पैसे। अब 4 रुपए 25 पैसे में जिंदगी कैसे चलेगी।
0: बिल्कुल मैम।
1: बड़ी मुश्किल की जिंदगी थी। अब तो मैं बहुत एंजॉय करके उस बात को यहाँ सुना रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है कि
0: ऐसा हुआ था। बिल्कुल।
1: ऐसा हुआ था, जब मैं जिन्होंने काम दिया था उनके यहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो ये डिजाइन है कैसे करोगी ये वो। मैंने कहा सर ये देखो थोड़ा 7x12 का है, इसको बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, आप बता दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रही हो तुम, 11,000 रुपए मांग रही हो। अभी 11,000 रुपए जो मैंने मांगे थे वो 1996 में मांगे थे। आप सोचिए कि 1996 में 11,000 रुपए बहुत होते थे।
0: बिल्कुल।
1: किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत टीडियस जॉब था।
0: जी जी मैम।
1: उन्होंने कहा नहीं यार ये तो तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो डन। डन हो गया 11,000 में। मैंने कहा आप मुझे 5,000 एडवांस भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने मुझे 5,000 दिए। मैंने अपनी जिंदगी को इंश्योर करने के लिए हम सबसे पहले ग्रॉसरी शॉप में गए, वहां से साल भर का सामान लिया, अनाज दालें मसाले वगैरह जो मुझे साल भर के लिए चाहिए था।
0: जी जी।
1: वो सारा घर में रखा, और हम पहली बार उस जो कठिन समय चल रहा था उसमें पहली बार हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो 450 रुपए का मैंने खाना खाया और हम घर आ गए।
0: बिल्कुल।
1: उससे एक दिन पहले मेरी आंखों में बहुत आंसू थे।
0: जी जी।
1: आप सोचिए जिसने कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए, अगर दाग लग गया तो वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनेगी, ऐसी वाली लड़की जिसने नमक से रोटी खाई हो, तो आप समझ सकती हैं
0: कि कैसे उन्होंने दिन को
1: कैसे
0: बदला।
1: हाँ
0: बिल्कुल मैम।
1: तो वो जो नमक की रोटी और वो जो ऐसा वाला स्टोव होता था ना जिसमें मक्खी होती थी, पिन से उसको सीधा करते थे, वो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा घूमता था, तो वो मिट्टी के तेल वाला हवा भरने वाला पंप भरने वाला स्टोव, उफ बहुत खराब था वो समय।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज लगता है कि उसको पार करके आना शायद अच्छा ही था।
0: बिल्कुल मैम आपने बहुत सही कहा। तो जैसा कि आपने आपके जीवन का चुनौती भरा पल हमें बताया है, यही आप आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाएं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वो अपने जीवन में बदलाव ला सके।
1: सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने खाने में फाइबर प्रोटीन और फिर कार्ब्स।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसका इस्तेमाल करें। मुझे याद पड़ता है कि जब नमक से रोटी खाई थी दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे लगता था यार मैं तो नमक से चला लूंगी अपनी जिंदगी, लेकिन जो मेरे पेट के अंदर पल रहा है एक नया नई जिंदगी है, क्या वो नमक खा के बड़ा होने वाला है?
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी आज की तारीख में भी हमारी बहुत सी बहनें
0: होंगी
1: जिनके पास पोषण से भरी हुई सब्जी नहीं है, मतलब उनकी थाली जो है वो पोषण युक्त नहीं है,
0: नहीं है,
1: पोषण है ही नहीं। तो सबसे पहले उनको अपने आने वाली जिंदगी के बारे में, यानी जो बच्चा वो अपने पेट में पाल रही हैं, जो देश का भविष्य है, जो उनकी फैमिली का भविष्य है, उस भविष्य को सुरक्षित करें। पोषण वाला खाना खाएं। मैं ये शब्द नहीं कहूंगी कि संतुलित खाना खाएं,
0: बिल्कुल,
1: मैंने सिर्फ एक वर्ड में कहा कि पहले फाइबर लो, यानी सलाद खाओ भरपूर, सब्जियां खाओ, फल खाओ, उसके बाद बचे आपको लग रहा है कि भूख है तो प्रोटीन खाओ, जैसे आप दाल खा सकती हो, चने खा सकती हो उबाल के, उनको स्टीम करके खा सकती हो, बढ़िया मसाला वसाला डाल के खा सकती हो।
0: जी जी,
1: दालें बढ़िया खानी चाहिए। अब दाल चावल हम खाते हैं तो उसमें चावल तो होता है बहुत सारा, दाल होती है जरा सी, तो वो प्रोटीन नहीं जा रहा हमारे शरीर में, कब्ज़ हो रहा है। तो कोशिश करो कि दालें ज्यादा हो, बीन्स खूब सारे हो, सीड्स हो, ये सब खाने से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वागड़ रेडियो स्टेशन को, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे अंदर का जो एक छुपा हुआ भाव था उसको बाहर लाया।
0: बिल्कुल मैम।
1: और उन सारी महिलाओं को भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुन रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सुनने के बाद अगर वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाएंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारे बागड़ स्टेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: बिल्कुल मैम। साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता जी जुड़ी हुई थी, उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का मैं आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होवे एनीमिया तक की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
4: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
6: साथियों, सत्य हमारी पहचान बने, अहिंसा हमारी शान बने, गांधी जी का हर सपना साकार बने। जी हाँ, हर दिल में हो प्रेम का उजियारा, न हो किसी से द्वेष या किनारा, गांधी जी का यही था नारा।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हमारे बीच में नया प्रकरण जुड़ा था सबके गांधी गांधी जी के उपवास के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: अब यही इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएं अंजलि जी। तो बात करें साथियों, तो इससे मालिकों पर दबाव पड़ता था, इतनी ही इस उपवास की कमी थी, परंतु इस देश के लोग ईश्वर के नाम पर ली गई प्रतिज्ञा अपने पर आने वाली मुश्किलों के कारण भूल जाया करते थे और ये सभी गांधी जी सहन नहीं कर सकते थे।
1: जी हाँ,
0: गांधी जी के लिए ये प्रश्न हिंद में चली आई संस्कृति, प्राण जाए पर वचन न जाए की रघुकुल से चली आई संस्कृति की रक्षा के लिए था। आज श्रोता साथियों, 87 वर्षों के बाद भी सोचने पर लगता है कि गांधी जी द्वारा समस्या के समाधान के लिए रखा गया साधन शुद्धि विषयक आग्रह और मिल मालिकों द्वारा सुझाए गए पंच के नाम पर रखा गया विश्वास कुल मिलाकर अत्यंत शुभ परिणाम लाने वाला निकला।
1: बिल्कुल,
0: उस समय अंजलि जी अहमदाबाद के मजदूरों और मालिकों के द्वारा अपने विवाद के हल हेतु स्वीकृत पंच व्यवस्था आज तक इस शहर के मालिक मजदूरों दोनों के लिए लाभदायक रही है, साथ ही दूसरे नगरों और उद्योगों के लिए भी अनुकरणीय बनी हुई है।
1: बिल्कुल, यही कशिश बात करें तो ये उपवास किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं थे, दोनों वर्गों के साथ गांधी जी के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। सार्वजनिक जीवन में श्रोता साथियों होने वाली प्रतिज्ञा भंग को रोकने का इसमें प्रयास था और इस अर्थ में यह एक सांस्कृतिक प्रयास जैसा उपवास था। उसके बाद का गांधी का उपवास राजनीतिक कारणों से था, पर उसकी प्रक्रिया सांस्कृतिक थी। इस पुस्तिका में गांधी जी के श्रोता साथियों एक एक उपवास का उल्लेख करने की कल्पना नहीं है, परंतु उनके उपवास के अलग अलग पहलू पाठकों की दृष्टि में आए ऐसा प्रयत्न कशिश हम कर सकते हैं। यह उपवास था मात्र एक दिन का प्रतीक उपवास, जो उन्होंने रॉलट एक्ट का विरोध जारी जाहिर करने के लिए पूरे देश के लिए सुझाया था।
0: बिल्कुल,
1: पूरे देश में श्रोता साथियों इस कानून के विरुद्ध लोगों में तीव्र भावना प्रतिव्रत देकर इस भावना के लिए उचित अभिव्यक्ति मिले, यही इसका आशय था।
0: जी हाँ,
1: इस कार्यक्रम के बारे में गांधी जी ने कशिश श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी से सलाह ली थी, जिनके वहाँ वे मेहमान थे। विरोध प्रदर्शन करने के 3 कार्यक्रम एक साथ सूचित किए गए थे, जैसा कि पहला 24 घंटे का उपवास, दूसरा था सर्व सामान्य हड़ताल और तीसरा था प्रतिबंधित साहित्य का सार्वजनिक विक्रय। उपवास को सुबह से शाम तक रखा गया, इसके पीछे ये दृष्टि थी कि जिन मुसलमानों को रोजा रखने की आदत होती है वे लोग भी इस परंपरा को समझ सके। उपवास लंबी अवधि तक न रखने के पीछे वजह यह थी कि विशाल समुदाय भी इसमें शामिल हो सके। हड़तालों के पीछे तब तक सामान्यतः या तो आर्थिक या स्थानीय कारण रहते थे। इस समय की हड़ताल कशिश एक राष्ट्रीय प्रश्न को लेकर हो रही थी। विरोध प्रदर्शन की परंपरागत साधन को गांधी जी ने राष्ट्रीय विरोध का माध्यम बना दिया। इसके बाद कई सफल असफल प्रयोग हुए थे।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों उसी वर्ष अहमदाबाद और मुंबई में गांधी जी द्वारा 2 बार किए गए उपवास सामाजिक जीवन में व्याप्त हिंसा के विरुद्ध ही थे। ऐसे ही पर इससे बहुत बड़े व गंभीर कारण से किए गए उपवास की ब्योरेवार चर्चा हम आगे करेंगे साथियों। यहाँ मात्र उनका उल्लेख करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: जी हाँ,
0: वहीं 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए उपवास पूरे देश में चर्चा के विषय बन गए थे। इसका कारण उपवास ही नहीं बल्कि गांधी जी द्वारा उनके साथ लिया गया निर्णय भी थे। असहयोग का कार्यक्रम साथियों आगामी वर्ष अपने पूरे जोश खरोश के साथ शुरू हो चुका था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आग्रह से उसके साथ सविनय अवज्ञा और जरूरी लगे तो असहयोग कार्यक्रम भी जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका था।
1: जी हाँ,
0: इस कार्यक्रम के आरंभ में साथियों प्रयोग के बतौर बारडोली में तहसील स्तर पर आंदोलन चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरा देश अंजलि जी बारडोली के कार्यक्रम का परिणाम देखने के बाद सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग की लड़ाई शुरू करने के लिए मचल रहा था।
1: जी हाँ
0: साथियों, कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए गांधी जी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ एक अखबार में उन्होंने समाचार पढ़ा कि संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा गांव में लोगों के समूह पर गोलियां चलाते समय पुलिस की गोलियां खत्म हो गई। साथियों गोलीबारी से भी ना बिखरने वाले लोगों के समूह ने उत्तेजित होकर पुलिस का पीछा किया, फिर पुलिस वाले भागे। उन्होंने जाकर पुलिस चौकी में आश्रय लिया और अंदर से दरवाजे भी बंद कर लिए। वहीं उत्तेजित समूह ने पुलिस चौकी को आग ही लगा दी। उसमें श्रोता साथियों 21 सिपाहियों और एक अधिकारी का भुर्ता बन गया। यह समाचार पढ़कर गांधी जी को बहुत धक्का लगा। उससे पहले मुंबई और मद्रास में हुई हिंसा से उनके मन में थोड़ी गिड़गिड़ाहट शुरू हो चुकी थी। चोरी चोरा की घटना को गांधी जी ने ईश्वर की ओर दिया हुआ खतरे का संकेत माना।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फौरन स्थगित करने और 5 दिनों का उपवास का निर्णय लिया। वहीं श्रोता साथियों, कांग्रेस कार्यकारिणी के जो सदस्य जेल से बाहर थे उनको बुलाकर और समझाकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही 1921 के असहयोग आंदोलन की सफलता देखकर मुग्ध हुए नेतागण इस निर्णय से स्तब्ध रह गए।
1: बिल्कुल,
0: किसी सेनापति को यूं जीती हुई लड़ाई के समय मोर्चा समेटते उन्होंने देखा नहीं था। कई दुखी हुए, कईयों को गुस्सा भी आया और कईयों ने तो गांधी जी से पत्राचार करके अपना खेद प्रकट किया।
1: जी हाँ बिल्कुल कशिश, कईयों ने साथियों के आगे अपना गुस्सा निकालते हुए इसे गांधी जी की भयंकर भूल कहा। संपूर्ण चोरी चोरा प्रकरण में गांधी जी के उपवास को लेकर देश में शायद ही कोई चर्चा चली। सारी चर्चा गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को लेकर चली।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, देश में समग्रतया व्यापक निराशा की भावना का लाभ लेकर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में आयोजित खास आंदोलन में उन्हें 6 बरस की सजा सुनाई गई। इस प्रसंग में गांधी जी उपवास का विषय खास चर्चा या चिंता का कारण नहीं बना। कारण यह कि उपवास 5 दिनों के निश्चित किए हुए समय तक का था, उसमें से वे अपेक्षाकृत सहजता से पार निकल गए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी उपवास प्रकरण को लेकर बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी हम ये बातें जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में गांधी की उपवास प्रकरण में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, यही बात आती है कशिश, चोरी चोरा की घटना ने देश को बड़ा सबक सिखाया।
1: बिल्कुल,
0: देश इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि यह नेता ऐसा है जो अपनी लड़ाई में शुद्धता बनाए रखने की खातिर जीती लड़ाई को भी वापस समेटते ठिठकेगा नहीं। वैसे देखें तो गांधी जी ने इस उपवास का प्रयोग अहिंसक व्यूह रचना के एक भाग के रूप में किया, परंतु इसमें उन्होंने एक ऐसी बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो गांधी के मन में तो पहले से होगा, पर जिसका उल्लेख उन्होंने बाद के कई उपवासों के समय किया था। यह बात थी ईश्वर का संकेत, किसी निराशावादी की नहीं, तथापि आंदोलन में पूरे दिल से जुड़े व्यक्ति की दृष्टि से इस घटना का मूल्यांकन करना हो तो कशिश यूँ कहा जा सकता है कि पूर्व में हुए दंगे और चोरी चोरा की घटना से गांधी जी ने देश की नब्ज टटोल ली थी। उन्होंने देख लिया था कि देश राष्ट्रव्यापी सक्रिय अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार न था, अतः उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया।
1: जी हाँ साथियों, 1924 में दिल्ली में किया गया गांधी जी का उपवास उनके जीवन के सबसे लंबे दो उपवासों में से एक था। 1924 में कौमी एकता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अंजलि जी गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया था। दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर रहते हुए किए गए इस उपवास का निर्णय गांधी जी ने अकेले अंत प्रेरणा से ही किया था।
0: बिल्कुल,
1: अगर उनके शब्दों में कहें तो वे भीतर की आवाज के जवाब में किए गए उपवास थे। उनके अनुसार वे ईश्वर के आदेश के समान थे। गांधी जी के साथियों, इस मनोभाव को समझा जा सकता है। नितांत बाल्यकाल से गांधी जी ने अंतर के विवेक को सर्वोपरि महत्व दिया था। वे एक प्रकार से अपनी माता के भक्त ही थे, बड़ों के आदेश को हमेशा सदा शिरोधार्य करने जैसे आज्ञा पालक। पर दीवान करमचंद गांधी के घर का शौचालय साफ करने के लिए आने वाले को न छूने की माता की आज्ञा मानने को वे तैयार नहीं थे। उनका आंतरिक विवेक किसी व्यक्ति को अस्पृश्य मानने को तैयार नहीं था अंजलि जी, और यही अंतर का विवेक उन्हें आगे ऊपर यूं कहला सका था। यदि कोई पंडित मेरे सामने ये सिद्ध कर दे कि वेद में अस्पृश्यता का उपदेश है तो मैं वेद को त्याग दूंगा पर अस्पृश्यता को नहीं मानूंगा। साथियों, गांधी जी की अनेक संकट के प्रसंगों में उन्हें उनकी अंतरात्मा के विवेक ने मार्ग सुझाया था।
0: बिल्कुल,
1: वैसा विश्वास रखते थे कि यदि कोई पूर्ण नम्रता से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उससे मार्गदर्शन मांगे तो उसे अवश्य मिल जाता है। यदि मनुष्य अपनी वंशी को निराभिमान और विकार रहित रखता है तो उस वंशी से उसे हरि का स्वर सुनाई देता है।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि दिल्ली के उपवास की घोषणा के बाद गांधी जी के कई हिंदू व मुस्लिम जिगरी मित्रों ने उनसे प्रेम व नम्रता से पूछा भी था कि इतना बड़ा निर्णय करने से पहले हमारे साथ चर्चा तो करनी थी ना, पर गांधी जी का स्पष्ट उत्तर था कि यह मामला मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का था, इसलिए दूसरे किसी को बीच में डालने की उन्हें जरूरत ही नहीं लगी। अंतरात्मा की आवाज की बात उस समय तो बहुत स्पष्ट थी, वह मात्र एक पक्षीय आदेश नहीं था। श्रोता साथियों, वह एक संवाद के अंत में प्राप्त आदेश था। देश की बिगड़ती कौमी परिस्थिति को देखकर गांधी जी अकुलाहट तो महसूस करते ही थे कशिश, इस परिस्थिति में क्या किया जाए यह उन्हें सूझ नहीं रहा था। वे प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता सुझाओ। अचानक उन्हें अंदर की आवाज सुनाई दी कि उपवास कर। उन्होंने उस आवाज से पूछा कितने दिनों के, तो उत्तर मिला 21।

0: इससे पूर्व अपनी सामान्य बुद्धि से विचार करने पर उन्होंने 40 दिनों के उपवास की बात सोची, पर 21 दिनों के उपवास का उन्हें भीतर से आदेश मिला। इस उपवास के दरमियान दिल्ली में देश के धार्मिक और राष्ट्रीय नेताओं की एक परिषद बैठी थी। उसने देश की परिस्थितियों ज्यादा न बिगड़े इस दृष्टि से एक आचार संहिता तैयार की।
1: बिल्कुल,
0: इस परिषद का मुख्य लाभ तो शायद यह हुआ कशिश कि हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी समस्याएं स्पष्टता से व्यक्त की। इसमें स्पष्टता थी, कटुता अल्पतम थी, बाकी शिकायतें तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के विरुद्ध करनी थी।
1: परंतु
0: सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होने का शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि इसी शहर में गांधी जी इस समय उपवास कर रहे थे। इस उपवास ने सामान्यतः जनता के हृदय को आंदोलित करने का काम किया। लोगों के विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति के अनेक दृश्यों का वर्णन हमें महादेव भाई देसाई की डायरी में देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हम बात कर रहे थे उपवास प्रकरण के बारे में, अगले रविवार को इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी।
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।

दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको बताया था कि आज भी मैं व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ और हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म हल्का मसालेदार और घर का बना खाना खाने का मन करता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक पारंपरिक व्यंजन मेथी बाजरे के थेपले, जो कि राजस्थान और गुजरात के कई घरों में बरसात के दिनों में बड़े चाव से बनाया जाता है। इसे सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या सफर में भी खाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों हमें सामग्री चाहिए: एक कप बाजरे का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, एक कप बारीक कटी ताजी मेथी, एक चम्मच दही, एक चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच तिल, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल या घी हमें चाहिए होगा। ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद दोनों आटे को मिक्स करके उसमें सारे मसाले, दही, थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लेना है। आटा गूंथ लेने के बाद 10 मिनट तक श्रोता साथियों हमें उसे ढककर रखना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर थेपले बेलने हैं और जैसे हम दूसरे पराठे बनाते हैं वैसे ही तलवे पर हल्का घी या तेल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हमें सेकना है। इसे हम लहसुन की चटनी, दही, घर के बने अचार या छाछ के साथ परोस सकते हैं। श्रोता साथियों, बाजरा जो है उसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर बहुत सारे अच्छे स्रोत होते हैं। मेथी जो है वो पाचन में मदद करती है और शरीर को पोषण देती है। तिल शरीर को अच्छे वसा और कैल्शियम प्रदान करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कम तेल में बनने के कारण यह तले हुए नाश्ते का बेहतर विकल्प है। इसलिए आप इस बरसात के मौसम में मेथी और बाजरे के गरम गरम थेपले बनाकर खा सकते हैं, जो कि स्वाद में भी बेहतर है और पोषण से भी भरपूर है। बारिश के मौसम में बाहर का खुला तना भुना भोजन संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। वहीं घर का बना ताजा थेपला लंबे समय तक स्वादिष्ट रहता है और पेट पर भी भारी नहीं पड़ता। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्थानीय अनाज और स्वास्थ्य का खजाना है। इस बरसात के मौसम में घर की रसोई में बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें और हरी सब्जियों से बने ऐसे व्यंजन जरूर शामिल करें। स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी और अपनी परंपरा से जुड़ाव भी बना रहेगा। तो ये हमने जाना मेथी और बाजरे के थेपले के बारे में। वहीं अब एक और व्यंजन की विधि के बारे में मैं आपको बताऊं, तो हम बात करते हैं चने और मक्का का बना चटपटा घुघरी। जी हाँ श्रोता साथियों, बरसात का मौसम आते ही बाजार में ताजा मक्का और हरे चने मिलने लगते हैं। हमारे गांव में इन्हीं से बनने वाली एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश है घुघरी। यह कम तेल में बनती है, पेट भरती है और शरीर को भरपूर पोषण भी देती है। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगी: 2 कप उबले हुए हरे चने, 1 कप उबले हुए मक्के के दाने, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच अदरक, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। ये सारी श्रोता साथियों सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद हमें इसे बनाने की तैयारी शुरू करनी है। इसके लिए हमें कढ़ाई में तेल गरम करना है, जीरा और हींग का तड़का लगाना है, प्याज, अदरक, हरी मिर्च उसमें हमें अच्छे से भून लेना है। याद रखिए श्रोता साथियों कि अगर इनमें से कोई भी चीज कच्ची रह जाती है तो हमारे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से भूने फिर टमाटर और मसाले डालकर अच्छे से पकाना है। अब उसमें उबले हुए हरे चने, मक्का डालकर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर हमें उसे पकाना है। आखिरी में नींबू का रस, हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म परोस कर सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ मिलकर इसे खाएं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि ये पोषण से भरपूर व्यंजन की विधि है। हरे चने जो होते हैं उसमें प्रोटीन और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। मक्की में हम जानते हैं कि ऊर्जा और फाइबर होता है। कम तेल में बनने वाला यह हल्का और सुपाच्य भोजन होता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी के लिए उपयुक्त है। कहना चाहूंगी कि बरसात के मौसम में इसे इसलिए खाया जाता है क्योंकि ये शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देता है, लंबे समय तक पेट भरा रखता है
बाहर मिलने वाले तने भुले नाश्ते से बेहतर होता है और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। स्थानीय और मौसमी सामग्री से बनने के कारण यह किफायती भी है। तो इस तरीके से हमने दो व्यंजनों की विधि के बारे में जाना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आगे भी मैं एक और व्यंजन की विधि आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि क्यों न एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन कर लें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि बारिश का मौसम चल ही रहा है और यह मौसम अपने साथ ठंडी फुहारे, हरियाली और गर्मा गर्म खाने की इच्छा लेकर आता है। ऐसे मौसम में अक्सर लोग बाहर के पकौड़े, समोसे, चाट, तले भुने भोजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि यही स्वाद घर पर पारंपरिक तरीके से और पौष्टिक सामग्री के साथ बनाया जाए तो स्वाद भी मिलता है और सेहत भी बनी रहती है। तो ऐसे ही एक और व्यंजन की विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम बात करेंगे मूंग दाल और मिक्स सब्जियों से बने चटपटे चिल्ले की। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। एक कप भीगी हुई मूंग दाल, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटी गाजर कद्दूकस की हुई, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, दो हरी मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अदरक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल या घी हमें चाहिए। ये सारी सामग्री श्रोता साथियों हमें अपने घर के सदस्यों के अनुसार इकट्ठा करनी है। उसमें से आप कुछ मात्रा ऊपर नीचे कर सकते हैं जो आपने सामग्री ली है उस अनुसार। अब यही इसे बनाने की विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें भीगी हुई मूंग दाल को अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लेना है। अब इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, मसाले और हरा धनिया हमें मिलाना है। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल डाल देना है उस पर और उसे चारों तरफ फैला देना है। फिर हमने जो घोल तैयार किया है उसको हमें तवे पर डाल के अच्छे से पतला फैला देना है। जब वो एक तरफ से अच्छा सुनहरा हो जाए तो हमें दूसरी तरफ फिर से उसे सेकने की जरूरत है। दोनों तरफ से सुनहरा होने के बाद हम इसे खा सकते हैं। इसके लिए हरा धनिया, पुदीना की चटनी हम बना सकते हैं, टमाटर की चटनी, दही के साथ भी हम इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, मूंग दाल और मिक्स सब्जियों का चटपटा चिल्ला हमारे घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को बहुत पसंद आएगा। और बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म बनाकर हम इसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। यही बात करें कि ये व्यंजन क्यों खास है तो हम देखते हैं कि मूंग दाल जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है। सब्जियाँ जो होती हैं उसमें विटामिन, फाइबर, खनिज होता है। कम तेल में बनने के कारण यह पाचन के लिए भी हल्का रहता है। बारिश के मौसम में शरीर को ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसे पसंद करते हैं। इसलिए ताजा और गर्म भोजन ही हमें बारिश के मौसम में खाना है। कटी हुई सब्जियां और फल जो हम काम में ले रहे हैं उन्हें हमें अच्छी तरीके से धोकर उपयोग में लेना है। बासी और खुले में पड़ा जो भोजन होता है उसे खाने से बचना है। पीने का पानी हमें उबालकर और फिल्टर किया हुआ पीना है। अदरक, हल्दी, लहसुन और काली मिर्च जैसी पारंपरिक चीजों का सीमित उपयोग हमें करने की जरूरत है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, आपको कहना चाहूंगी कि ये सारी बातों का विशेष तौर पर जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने घर परिवार के सभी सदस्य को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो तीनों जो व्यंजनों की विधि बताई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से विदा लेना चाहेंगे। आशा करूंगी कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में नई प्यारी व्यंजनों की विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: આપે ક્યારે વિચાર કર્યો હૈ કે જૈયા પેડની છાવમાં આપણે રહ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હૈ જેની હવામાં આપણે હાલ રહ એ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હૈ હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કિ આપણી જિમ્મેદારી હૈ એક પેડ લગાડંગા પાણીને બચાડંગા ને આપણે ધરતીને જીવનદાન આલંગા
1: હવે પ્રકૃતિને બચાવો ભવિષ્યને હદારો
0: હવે આજે નાના નાના કદમ હૈ એ આબાવાળા કાલને બદલાવની શરૂઆત હૈ
1: વાગડ રેડિયો વાગધરા સંસ્થા દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત
2: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: भूमि आवंटन हो दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया हर बोना ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार याद रखो जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
0: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है
1: होवे भाईन बोनो आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले આપણા ને ખવાના મે દાળ પત્તેદાર સબ્જી ગુડ બાજરા તિલ નીંબુ ને સંતરા ગોબી તરબૂચ આંવલા ટમાટર નું સેવન કરવું સુવે
0: હોવે આ સબ સાવધાની રાખંગા ને આ સબ સબ્જી ને દાળ ખંગા તો અનિમિયા થકી બચી શકંગા
2: વાગડ રેડિયો એવમ વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत रही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भारतीय संविधान में। हमने जाना था संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है, आसान नहीं थी संविधान की राह, फिर हमने जाना तानाशाही को लेकर दूरदेशी उपाय के बारे में। यहीं अब बात करते हैं संवैधानिक लोकतंत्र और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि संवैधानिक लोकतंत्र और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि कार्यपालिका में स्थिरता होनी चाहिए और उसे दायित्वपूर्ण होना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में कार्यपालिका वर्ग के दायित्वों की दैनिक छानबीन बहुत आवश्यक है। ये कार्य संसद की प्रक्रियाओं के जरिए किए जाने की व्यवस्था की गई, जहां सवाल जवाब होते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अभिभाषण पर बहस हो सकती है। आज अगर हमारी संसद में बहस कमजोर हो रही है, मनमाने तरीके से कानून बन रहे हैं या संशोधित किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका बहुमत का अश्लील इस्तेमाल करके संविधान की मूल भावनाओं की उपेक्षा कर रही है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें राज्य व्यवस्था पर अंबेडकर के क्या विचार थे, तो श्रोता साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के मसौदे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये मसौदा ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है जिसे हम द्विमुखी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें संघ राज्य यानी कि केंद्र सरकार और प्रादेशिक राज्य यानी कि राज्य सरकार है और इन दोनों को ही प्रभुता प्राप्त है, जिसका प्रयोग वे संविधान के मानकों के मुताबिक कर सकते हैं। संघ और राज्य सरकारों के दायित्वों और अधिकारों का निर्धारण बेहद संजीदा सोच विचार के साथ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय पर कहा कि जरा कल्पना करें कि हमारे यहाँ 20 राज्य हैं और सभी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, फौजदारी, कानून, बैंकिंग और व्यवसाय और न्याय व्यवस्था के 20 अलग अलग कानून हैं। तब नागरिकों का क्या होगा? इससे राज्य कमजोर होगा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। इस स्थिति को ध्यान में रखकर देश में एक न्याय व्यवस्था मूलभूत कानूनों और नियमों में एक रूपता और आवश्यक पदों पर नियुक्ति के लिए देश में एक लोक सेवा व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
1: जी हाँ,
0: इसकी दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि कानून, रोजगार, नीतियाँ, कृषि पर राज्य सरकारों को कायदे कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
1: बिल्कुल अंजलि, भविष्य की आशंकाएं और अंबेडकर को लेकर हम बात करें तो उस समय एक भय यह भी व्यक्त किया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर केंद्र सरकार यानी कि संघ व्यवस्था को बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बना रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि देश को एक बना रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र एक आवश्यकता है। शायद वे यह नहीं भाव पाए कि आने वाले सालों में प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराएं भ्रष्ट पूंजी के साथ मिलकर भारत में संघीय लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर सकती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आप देखेंगे कि आज आर्थिक संसाधनों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तक की व्यवस्थाओं पर केंद्र ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और राज्य सरकारों को अपंग बना दिया है।
0: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी, लेकिन ये सच नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र के संदर्भ में भविष्य की आशंकाओं से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा में ही इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट के संदर्भ से कहा कि किसी भी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहाँ के बहुसंख्यक लोगों में हो बल्कि देश के सभी नागरिकों में किया जाए, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली, हट्टी, अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वह स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, संवैधानिक प्रासंगिकता को लेकर हम बात करें तो आज भी भारत का संविधान प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत में सामाजिक विधानों जिनमें भेदभाव, छुआछूत, असमानता और हिंसा के कई रूप मौजूद हैं,
0: जी हाँ,
1: उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा और संवैधानिक विधानों की मौजूदगी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि समाज आने वाले समय में उन्हीं राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार देगा जो सामाजिक विधानों को बनाए रखने के लिए शासन करने के लिए तैयार रहेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: हुआ भी यही, जाति, आर्थिक भेद और हिंसा और पूंजी की लूट भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित होते रहे। इसी आशंका को भांपते हुए संविधान में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया गया ताकि आने वाले सरकारें संविधान को पूरी तरह से खत्म न कर दे। इसी कारण से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया।
0: जी बिल्कुल, हम देखते हैं जागृति जी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि संविधान को लागू करने के लिए वैधानिक नैतिकता बुनियादी जरूरत है।
1: क्या हम वैधानिक नैतिकता का प्रसार संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक प्रकृति जन्य नहीं होती, इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः ही अप्रजातंत्रात्मक है और यहाँ प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। ऐसे में शासन के नियमों के निर्धारण का काम विधान मंडल पर न छोड़ना ही बेहतर है।
2: जी हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर मानते थे अंजलि कि प्रजातंत्रात्मक संविधान को शक्तिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है, किंतु इससे जुड़ी हुई दो बातें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते हैं। एक, शासन के तरीके यानी कि सरकार किसके हितों को प्रधानता देगी, नागरिकों की मूल जरूरतों को कल्याणकारी नजरिए से देखेगी या नहीं, कानून का उपयोग जनहित के लिए करेगी या अहित के लिए, सांप्रदायिक व्यवहार करेगी, पूंजी के एकाधिकार को संरक्षण देगी या नहीं। साथियों, ये सब संविधान की व्यवस्था से गहरा संबंध है। इसका मतलब ये है कि सरकार किस मंशा से संविधान का पालन करेगी, ये महत्वपूर्ण है। दो, संविधान के स्वरूप को बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतः उलट देना और शासन को संविधान की भावना के अनुरूप या प्रतिकूल बना देना बिल्कुल संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है अंजलि कि जहाँ पर वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, वहीं हम शासन के विस्तार यानी कि शासन के तरीकों की छोटी से छोटी बातों को विधान में न रखकर विधान मंडल यानी कि संसद पर छोड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि ये हमने जाना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान के बारे में, आगे हम जानेंगे महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के बारे में, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी बहुत ही अच्छी, यही हम जानते हैं महात्मा गांधी जी और भारतीय संविधान के बारे में।
1: जी हाँ।
0: तो अंजलि, भारत के संवैधानिक और संवैधानिक भारत की बात करते हुए महात्मा गांधी जी का जिक्र आना लाजमी है। यूं तो वह सीधे तौर पर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, इन सब में उन्होंने जो भी लेखन किया उसमें ये झलक देखी जा सकती है कि गांधी जी दरअसल किस प्रकार का भारत चाहते थे।
1: जी बिल्कुल।
0: दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें उस संविधान की झलक महसूस की जा सकती है जो गांधी जी भारत के लिए चाहते हैं। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय संविधान के केंद्र में गांव हो। वह देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो ग्राम पंचायत के स्तर से शुरू होकर केंद्र तक आए।
1: जी
0: इसी तरह लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका को लेकर उनके विचार भी एक संवैधानिक दिशा की ओर इशारा करते हैं।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी कि संविधान को लेकर गांधी जी की क्या अवधारणा थी, तो श्रोता साथियों, जब भी हम भारत के संविधान को लेकर किसी तरह का विश्लेषण करते, तब हमें उस संविधान को भी संदर्भ में रखना चाहिए जो महात्मा गांधी के दिलो दिमाग में था। यह सच है कि उन्होंने स्वयं कोई संविधान नहीं तैयार किया, परंतु प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमान नारायण अग्रवाल ने महात्मा गांधी की बातों और उनके लेखन का विश्लेषण करके स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान, द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया नामक एक दस्तावेज तैयार किया था। 60 पन्नों और 22 अध्यायों में विस्तारित इस दस्तावेज में बुनियादी सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, आंचलिक सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका सरीखे विषय शामिल किए गए थे। इस दस्तावेज की भूमिका में महात्मा गांधी ने लिखा, श्री रमन नारायण अग्रवाल ने जो लिखा है वह मेरे विचारों से असंगत नहीं है।
0: साथियों, द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केपी जायसवाल के हवाले से लिखा गया है कि प्राचीन भारत में कई स्वराज व्यवस्थाएं मौजूद थी। अंजलि, ये व्यवस्था संचालन के कई ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनका प्रयोग दुनिया के किसी अन्य देश या समाज में हुआ ही नहीं। साफ है कि भारत ऐतिहासिक रूप से संविधानिक संविधान व्यवस्थाओं के निर्माण की सक्रिय प्रयोगशाला रहा है।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि यह सच है कि भारत संविधान को लेकर गांधी के विचार किसी एक दस्तावेज में पूरी तरह संकलित नहीं है। भारत के भविष्य के संविधान को लेकर उनके विचार जहां तहां बिखरे हुए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उस वक्त के तमाम देशों के संविधानों से अलग सोच रखते हुए भी वह एक संवैधानिक लोकतंत्र के हिमायती थे। संवैधानिक लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है श्रोता साथियों, और राजनीतिक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उनके विचार के चलते गांधी को देश में संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण का आंशिक ही सही श्रेय दिया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा अंजलि। और हिंद स्वराज को लेकर हम बात करें तो गांधी

0: जी द्वारा लिखी इस पुस्तक के जरिए हम पहली बार ये जान पाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर गांधी जी क्या विचार रखते थे। गांधी जी जिस उभरते भारत की कल्पना कर रहे थे उसे नैतिक और भौतिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: औंध का संविधान और गांधी जी को लेकर हम बात करें अंजलि, तो दक्षिण महाराष्ट्र के सतारा जिले में औंध नामक एक छोटी सी रियासत थी। उस रियासत के शासक ने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी रियासत की सत्ता नागरिकों को सौंपने का निर्णय लिया। गांधी जी इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद औंध के लिए एक संविधान तैयार करवाया।
1: जी हम देखते हैं जागृति जी कि गांधी जी की सलाह पर तैयार किए गए औंध के संविधान में हर नागरिक को जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार, उपासना का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, निःशुल्क बुनियादी शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और न्यूनतम वेतन का अधिकार देने पर सहमति बनी।
0: जी हाँ।
1: वहाँ पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई और राजा की शक्तियाँ निर्धारित करने का काम विधायिका पर छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा, समाज कल्याण, पानी की उपलब्धता, सफाई के काम पंचायत को सौंपे गए।
0: बिल्कुल अंजलि। और औंध में विधायिका की व्यवस्था की गई, वहाँ कैबिनेट की व्यवस्था भी की गई, जिसके खिलाफ विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी। छोटे मोटे मामले पंचायत में निपटाए जाने थे और बड़े मामलों के लिए खुद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि 1939 में एक छोटे से भारतीय राज्य में संवैधानिक लोकतंत्र का प्रयोग शुरू हुआ और गांधी जी की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया लोकतंत्र था, जहां ग्राम पंचायत राज्य की सबसे बुनियादी इकाई थी। सन 1948 में भारत में विलय होने तक औंध अपने इस संविधान का बखूबी पालन करता रहा।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी गांधी जी का राम राज्य के बारे में, तो श्रोता साथियों, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के हवाले से राम राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि धार्मिक आधार पर इसे धरती पर ईश्वर के शासन के रूप में समझा जा सकता है। राजनीतिक तौर पर इसका अर्थ है एक संपूर्ण लोकतंत्र जहां रंग, नस्ल, संपत्ति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो।
0: जी हाँ।
1: जहां जनता का शासन हो, तत्काल और कम खर्च में न्याय मिले, उपासना, वाक और प्रेस को आजादी मिले और यह सब आत्मनियम से हो, ऐसा राज्य सत्य और अहिंसा पर निर्मित हो और वहाँ ग्राम और समुदाय प्रसन्न और समृद्ध हो। स्पष्ट है कि गांधी जी का राम राज्य हमारे संविधान के प्रावधानों और उसमें प्रदत्त अधिकारों से बहुत अधिक मेल खाता है।
0: जी हाँ।
1: उसमें जिस आत्मनियम की बात की गई है वह कुछ और नहीं बल्कि नागरिक बोध है।
0: बिल्कुल।
1: निश्चित रूप से गांधी जी का राम राज्य एक आदर्श संवैधानिक लोकतंत्र की रूपरेखा सामने रखता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ग्राम और समुदाय के साथ समृद्धि की बात करता है।
0: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी बातें रही, अगले रविवार ये हमारी फिर से बातें रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी। उसमें हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में, साथ ही संसदीय व्यवस्था के बारे में, गांधी और मौलिक अधिकारों के बारे में, इसी के साथ गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या थे, अधिकार और समानता के बारे में और साथ ही गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। अगले रविवार हमारी फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ में।
1: जी बिल्कुल।
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे हैं।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल। स्वागत करती हूं आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर, गांधी जी को पाने का एक प्रयास, गांधी आत्मदर्शन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम

हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। श्रोता साथियों, इन्हीं कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बन, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये रुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मु अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया, बीज बोया, वो पसल बहाई वो मिश्रम करो, तो पसे बाप दादा नी जन्म माते मारो अधिकार केम नथी। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानूने आ वात मानी है, ना पन्या पूटे एनो हक कोई ले सके, ना रिवाज अने सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ श्रोता साथियों, बड़े सपने देखिए, कड़ी मेहनत कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में एक नए महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन को लेकर, साथ में हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को लेकर। जैसा कि सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें अंजलि, तो जैसा कि आपने कहा था कि सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: जी हाँ।
0: साथियों, प्रेरणादायक वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है अंजलि कि यदि मन में दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कठिन परिश्रम हो तो साधारण परिवार का एक बालक भी देश का सर्वोच्च

0: नागरिक बन सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के हर युवा के लिए आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और स्वावलंबन का संदेश है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत के उस महान व्यक्ति की जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा और सादगी से पूरी दुनिया का दिल जीता।
0: बिल्कुल,
1: ये केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उत्कृष्ट शिक्षक और भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति भी थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की।
0: बिल्कुल,
1: उनका जीवन श्रोता साथियों हमें सिखाता है कि यदि मन में बड़ा लक्ष्य, मेहनत करने की साहस और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो साधारण परिस्थितियों से निकल कर भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है।
0: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि आपने बताया कि वे विज्ञान, शिक्षा, नैतिकता और मानवता के अद्भुत संगम थे, इसीलिए उन्हें स्नेहपूर्वक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का कार्य करते थे अंजलि, और माता आशियम्मा एक सरल, दयालु एवं धार्मिक महिला थी।
1: बिल्कुल,
0: परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था लेकिन संस्कारों और ईमानदारी की समृद्धि थी। बचपन से ही कलाम साहब अनुशासन प्रिय, जिज्ञासु और मेहनती थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहते हैं कि गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मान लेना सपनों को रोक देता है। श्रोता साथियों, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना था कि वे देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे भारत विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसके बाद उन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे ISRO और DRDO जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कारण उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में सम्मान मिला।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम उनके जीवन के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो उनका संघर्षपूर्ण बचपन, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही समाचार पत्र बांटने का कार्य किया था।
1: बिल्कुल,
0: सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, अखबार वितरित करना और फिर विद्यालय जाना उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उनके लिए हर कठिनाई एक सीख थी। एक संवाद है जो हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे।
1: जी हाँ,
0: उनके मित्र और कलाम साहब के बीच में। उनके मित्र ने कहा कि कलाम तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तब कलाम जी ने कहा, क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों से नहीं अपने सपनों से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ।
1: जी हाँ,
0: तभी उनके मित्र ने कहा, अगर रास्ता कठिन हुआ तो? तभी कलाम साहब ने कहा कि कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत सरल रहा। वे बच्चों और युवाओं से मिलना, उन्हें प्रेरित करना और शिक्षा का महत्व समझाना कभी नहीं भूले। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। उनका विश्वास था कि युवा ही भारत का भविष्य है।
0: बिल्कुल,
1: वे हमेशा कहते थे जागृति जी कि हर युवा को बड़ा सपना दिखना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े लक्ष्य बनते हैं और बड़े लक्ष्य ही राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। 27 जुलाई 2015 को वे विद्यार्थियों को संबोधित करते समय मंच पर ही गिर पड़े और उनका निधन हो गया। जीवन का अंतिम क्षण भी उन्होंने शिक्षा और युवाओं को ही समर्पित किया।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ जैसे कि युवाओं के लिए उन्होंने समर्पित किया, ये बात आपने बताई, तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर कलाम मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। वो कहते थे कि यदि हर युवा अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर मेहनत करे तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने हजारों विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रेरित किया। एक बार उनके विद्यार्थी और डॉक्टर कलाम साहब के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
1: जी जी।
0: तभी डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि बड़ा सपना देखो। तभी विद्यार्थी बोला कि केवल सपना? तब डॉक्टर कलाम साहब बोले कि सपना, मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने का साहस, यही सफलता के सूत्र है।
1: जी हाँ।
0: और व्यक्तित्व की विशेषताओं को लेकर बात करें उनके, तो उनमें अद्भुत सादगी थी, ईमानदारी थी, अनुशासन था, राष्ट्रभक्ति थी, विनम्रता, वैज्ञानिक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति समर्पण थे।
1: बिल्कुल,
0: वे हमेशा कहते थे कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो समाज के काम आए।
1: बिल्कुल जागृति जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि सादगी, मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं श्रोता साथियों, बल्कि वह प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों युवाओं के दिलों में जगाई।
2: बिल्कुल,
1: उन्होंने बताया है कि सपनों को लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को कर्म बनाइए और कर्म को अपनी पहचान बनाइए। जो युवा सीखना नहीं छोड़ता वही जीवन में आगे बढ़ता है। महानता जन्म से नहीं मिलती है श्रोता साथियों, बल्कि अच्छे विचार, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है।
2: बिल्कुल अंजलि, 27 जुलाई 2015 को वो मेघालय के शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और व्याख्यान देते समय ही उन्हें हृदयघात आया और उनका निधन हो गया। उन्होंने अंतिम क्षण तक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का कार्य किया, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भारतीय युवाओं के लिए आशा, संघर्ष और सफलता की अमर गाथा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सीमित संसाधन किसी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम के बल पर कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है।
1: बिल्कुल,
2: बस आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल उनके विचारों की प्रशंसा न करें बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। अगर प्रत्येक युवा डॉक्टर कलाम जी के आदर्शों को अपनाएगा अंजलि, तो भारत न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। कहा गया है कि सपनों को लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को कर्म बनाइए और कर्म को राष्ट्र सेवा से जोड़ दीजिए। यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी, ये हमने जाना कार्यक्रम के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को। आगे हम कार्यक्रम में जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में, लेकिन अभी दोस्तों को क्यों न प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
2: बिल्कुल,

0: साथियों, जिस समाज की कलम जागती है वही समाज आगे बढ़ता है। महान लेखक केवल कहानियां नहीं लिखते, वे समाज की सोच और भविष्य भी करते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, हर वर्ष 31 जुलाई को ही उनकी जयंती मनाई जाती है। यह अवसर केवल जागृति जी एक महान साहित्यकार को याद करने का नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, साहित्य समाज का दर्पण है। इस कथन को अपने लेखन से साकार करने वाले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के ऐसे अमर लेखक हैं जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलित, गरीबों और आम जनता के जीवन संघर्ष को अपनी कहानियों और उपन्यास में जीवंत रूप दिया है। उनके साहित्य में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार, मानवीय संवेदनाएं और राष्ट्र प्रेम का गहरा संदेश मिलता है।
0: जी हाँ,
1: आज भी प्रेमचंद की रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे भारतीय साहित्य के ऐसे सूर्य हैं जिनकी किरणें हर पीढ़ी को नई दिशा देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गाँव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बाद में उन्होंने प्रेमचंद्र नाम से लेखन किया और इसी नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। उनके पिता अजायब राय डाक विभाग में कर्मचारी थे और माता आनंदी देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव और संघर्ष में बीता। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था और कुछ वर्षों बाद उनके पिता भी चल बसे। कम उम्र में ही जागृति जी उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। वे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते थे और पुस्तकों से गहरा लगाव रखते थे और यही लगन श्रोता साथियों आगे चलकर उन्हें भारत के महान साहित्यकारों में शामिल कर गई।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रेमचंद जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही वे अनेक प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ने लगे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में वे विद्यालय निरीक्षक भी बने, लेकिन उनका मन हमेशा साहित्य और समाज सेवा में लगा रहता था। श्रोता साथियों, प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उनकी पहली देशभक्ति से प्रेरित पुस्तक सोच ए वतन अंग्रेजी शासन को पसंद नहीं आई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया और यही नाम आगे चलकर अमर हो गया।
0: बिल्कुल जागृति जी, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ और अनेक उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इन रचनाओं में केवल कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए गहरा संदेश छिपा है। उन्होंने किसानों की मेहनत, गरीबों के संघर्ष, महिलाओं की पीड़ा और इंसानियत के मूल्यों को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद मानते थे कि शिक्षा, ईमानदारी और मानवता किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: चाहते थे श्रोता साथियों कि समाज में सभी को सम्मान सम्मान मिले और कोई भी व्यक्ति गरीबी, भेदभाव या अन्याय का शिकार न हो। उनकी लेखनी ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। जागृति जी कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति के साथ न्याय और समानता का व्यवहार हो।
1: प्रेमचंद जी को उनके जीवन काल में भले ही अधिक आर्थिक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन साहित्य जगत में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। श्रोताओं, लगातार आर्थिक कठिनाइयों और अव्यवस्था के बावजूद प्रेमचंद लिखते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे ऐसा साहित्य छोड़ा जो आज भी समाज को नई दिशा देता है। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह नहीं रोक सकती। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा के कथाकार थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उन लोगों की आवाज को शब्द दिए जिनकी पीड़ा अक्सर अनसुनी रह जाती थी। उनका जीवन संघर्ष, सादगी, सामाजिक चेतना और राष्ट्र प्रेम का प्रेरक उदाहरण है। आज जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब प्रेमचंद की रचनाएं हमें संवेदनशील बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। उनकी कलम ने जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं श्रोताओं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, अंत में श्रोता साथियों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अच्छी पुस्तकें जीवन की सबसे सच्ची मित्र होती है।
1: बिल्कुल,
0: जो समाज अपने साहित्य और संस्कृति का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है। महापुरुषों के विचार समय के साथ पुराने नहीं होते, वे हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं।
1: बिल्कुल,

0: इस गीत के साथ ही श्रोता साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताती हूँ जो कि हमारे जीवन से जुड़ी होती है और कई बार हमारे युवा साथी तनाव में आ जाते हैं तो ऐसी कहानियाँ सुनकर उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज भी मैं हाजिर हूँ एक ऐसी ही कहानी को लेकर आपके समक्ष। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में हमारा कार्यक्रम का दस्तूर है कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत सुनवाते हैं। तो पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का शीर्षक है नीम का आंगन, जी हाँ, जो कि जीवन मूल्यों और प्रेरणा का प्रतीक है। दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृति में आंगन का विशेष महत्व रहा है। आंगन केवल घर का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि परिवार, संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों का केंद्र होता है। जब आंगन में नीम का पेड़ हो तो उसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। नीम का पेड़ अपनी छाया, औषधीय गुणों और लंबे जीवन के कारण केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन का शिक्षक बन जाता है। नीम का आंगन हमें धैर्य, संघर्ष, सेवा, त्याग और सकारात्मक सोच का संदेश भी देता है। आज जब आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तब नीम का आंगन हमें अपनी जड़ों और मूल्यों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक भी मैंने आपको बताया कि नीम का आंगन, जो कि जीवन मूल्य और प्रेरणा का प्रतीक है। हम देखते हैं कि पेड़ों से जो मनुष्य को मिलता है उसकी कद्र इसीलिए नहीं है क्योंकि पेड़ पलटकर जवाब तलब नहीं करते। आज की कहानी है एक गांव की और उस गांव में है सरोज। सरोज की तरह जो उनकी कीमत जानते हैं, वे ही उसे पार्किंग के लिए जगह बनाने के नाम पर काटे जाने की राह में खड़े मिलेंगे। शुरू होते इस तरह से दोस्तों कहानी। गांव के उस पुराने घर में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी भी कहते थे जब हम छोटे थे तब भी ये इतना ही बड़ा था। उस नीम के नीचे ही घर की सारी जिंदगी बीतती थी। सुबह वही चाय बनती, दोपहर में वही खाट बिछती और रात को उसी के नीचे बैठकर लोग गर्मियों में तारे गिना करते। और उसी नीम से सबसे ज्यादा लगाव था सरोज को। दोस्तों, सरोज इस घर की बड़ी बहू थी। सांवला चेहरा, शांत आंखें और हमेशा काम में लगी रहने वाली औरत, जिसे पूरे घर में सबकी पसंद याद रहती थी। किसे पत्ती रोटी चाहिए, किसे दाल में घी ज्यादा पसंद है और कौन बिना चाय के सुबह बात तक नहीं करता। पर उसकी पसंद क्या थी ये किसी ने कभी नहीं पूछी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी तब उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल ही रही होगी। डोली से उतरते ही उसने सबसे पहले इसी नीम को देखा था। उसकी सांस ने हंसते हुए कहा था, इस पेड़ की तरह जड़े जमा लेना इस घर में। और सचमुच सरोज ने अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में रोप दी। पति महेश शहर में नौकरी करते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे, रात को थके हुए लौटते थे, बातें कम ही हो पाती थी। धीरे धीरे सरोज की दुनिया रसोई, आंगन और उस नीम तक सिमट गई। समय बीतता गया दोस्तों, दो बेटे हुए, घर की बेटियां भी ब्याह कर चली गई, घर में नई चीजें आने लगी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, पर नीम वही खड़ा रहा। और सरोज भी अब उसके बालों में सफेदी उतर आई थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था, फिर भी सुबह सबसे पहले वही उठती थी, नीम के नीचे झाड़ू लगाती, उसकी सूखी पत्तियां समेटती और हर दिन उससे बातें करती। देखो सब कितने बड़े हो गए हैं। एक दिन श्रुताओं बड़े बेटे ने कहा, माँ इस नीम को कटवा देते हैं। जैसे ही बड़े बेटे ने कहा दोस्तों, सरोज एकदम से चौंक गई और बोली, क्यों? बेटे ने बोला, बहुत गंदगी फैलाता है, पत्तियां गिरती रहती है और कार खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। सरोज उस समय चुप हो गई। दोस्तों, उसने पहली बार महसूस किया कि अब घर बदल चुका है, अब लोगों को छांव नहीं पार्किंग चाहिए। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई, खिड़की से बाहर नीम को देखती रही। हवा चलती तो उसकी डालियां धीरे धीरे हिलती, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खामोशी से सिर हिला रहा हो। उसे लगा वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी था। जिस तरह नीम ने बिना शिकायत सबको छांव दी, उसी तरह सरोज ने भी तो सबको सब कुछ दिया था, अपना समय दिया था, अपनी इच्छाएं और अपना पूरा जीवन, और अब दोनों ही बेकार समझे जा रहे थे। अगली सुबह मजदूर आए कुल्हाड़ी और मशीन लेकर। श्रुताओं, सरोज आंगन में खड़ी थी, उसकी आंखें नीम पर टिकी थी। बेटे ने कहा, माँ हट जाओ, पर वो वहीं खड़ी रही। उसने कहा, पहले मुझे हटाओ। जैसे ही सरोज ने ऐसा बोला कि पहले मुझे हटाओ, घर में एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, महेश ने पहली बार पत्नी की आंखों में इतने सालों का जमा हुआ दर्द देखा था। सरोज बोली, जब मैं इस घर में आई थी ना, तब ये नीम सबसे पहले मुझे मिला था। तुम
सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे, पर मैंने अपनी बातें इसी से करी है। जब पहली बार मायके की याद में रोई थी, तब इसके नीचे बैठकर ही रोई थी। जब बच्चों को बुखार आता था, तब इसकी छाँव में रातें काटी है। जब तुम्हारे पिताजी शहर काम करने गए, तब इसी तने से लगकर रोई थी मैं। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें सिर्फ पत्तियां दिखती है, मुझे पूरा घर दिखता है इसमें। बड़ा बेटा चुप हो गया। दोस्तों, उसने पहली बार अपनी माँ को माँ नहीं, एक इंसान की तरह देखा। एक ऐसी औरत जिसने बिना कुछ मांगे सब दे दिया था। मजदूर वापस चले गए, निम बच गया। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया था। अब शाम को बेटे भी कभी कभी नीम के नीचे बैठने लगे थे, पोते उसकी डालियों पर झूला डालते, और सरोज वो अब पहले से थोड़ी ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। एक शाम छोटा पोता उसके पास आकर बोला, दादी ये नीम इतना जरूरी क्यों है? तब सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा कुछ चीजें सिर्फ छाँव नहीं देती, घर को घर बनाए रखती है। नीम की छाँव बच गई थी, आंगन का पेड़ घर की पहचान बनी रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी आंगन का नीम। आगे इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी सुनाई थी आंगन का नीम, दोस्तों जैसे नीम का आंगन और जीवन की सीख इस पर बात करें तो नीम का आंगन केवल एक स्थान नहीं है बल्कि जीवन की पाठशाला है। इसकी छाया में बैठकर व्यक्ति शांति और सुकून का अनुभव करता है जैसे कि सरोज ने किया था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। नीम का पेड़ वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ता है, वो एक दिन में विशाल नहीं बन जाता। उसी प्रकार सफलता भी हमें धीरे धीरे मिलती है, मेहनत लगन और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। नीम का पेड़ हर मौसम का सामना करता है। हम देखते भी हैं कि गर्मी की तपती धूप, सर्दी की ठिठुरन और वर्षा की तेज बौछार भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। और यही संदेश मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जीवन में समस्याएं आती है, चुनौतियां आती रहती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां भी होती है, कभी असफलताएं भी हमें मिलती है तो कभी निराशा भी घेर लेती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति नीम की तरह अड़िग रहे तो वो हर संकट को पार कर सकता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। नीम का पेड़ बिना किसी स्वार्थ के सबको लाभ पहुंचाता है, ये आप और मैं भी देखते हैं। वो ये नहीं देखता कि उसके छाया में कौन बैठा है, वो सभी को समान रूप से शीतलता प्रदान करता है। और आज के समय में जब हम देखते हैं कि स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है तब नीम का आंगन हमें परोपकार और सेवा की सीख देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की सहायता करने लगे तो समाज में प्रेम सहयोग भाईचारे की भावना मजबूत होने लगेगी। आज हम देखते हैं श्रोता साथियों कि युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, प्रतियोगिता है, बेरोजगारी है और असफलताएं जैसी समस्या है उन्हें परेशान करती है। ऐसे समय में नीम का आंगन एक प्रेरणा बन सकता है। नीम का आंगन केवल एक पेड़ और एक स्थान का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण मूल्यों का प्रतीक है। ये हमें धैर्य सिखाता है, जैसा कि हमने आपको कहा था, संघर्ष करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है, परोपकार करना सिखाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। नीम की तरह हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि हम स्वयं मजबूत बने और दूसरों के लिए सहारा बने। आज आवश्यकता इसी बात की श्रोता साथियों कि हम प्रकृति से जुड़े, अपने संस्कारों को अपनाए और जीवन में मेहनत तथा धैर्य को स्थान दे, तभी हम एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके भी आंगन में नीम का पेड़ है तो उसे कभी मत हटाइएगा। जिस तरह सरोज ने विरोध किया है।

ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही पेड़ हमें धैर्य भी सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीम का आंगन। अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्ही दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, पहली कहानी है हमारी नन्ना दीपक और सच्चाई की जीत। जी हाँ बच्चों, एक समय की बात है, पहाड़ों और हरियाली से घिरी एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। दीपक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान अमीर या गरीब अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अच्छे चरित्र से बनता है। बच्चों, दीपक रोज सुबह उठता, माता पिता की मदद करता, स्कूल जाता और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता। दीपक पढ़ाई में अच्छा था और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूरे गांव में लोग उसे अच्छे व्यवहार के कारण बहुत पसंद करते थे। एक दिन बच्चों, स्कूल से घर लौटते समय दीपक को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा, बटुए में बहुत सारे पैसे थे, कुछ जरूरी कागज थे और एक पहचान पत्र भी था। उसके दोस्त मोहन ने कहा, दीपक, इतने सारे पैसे, चलो इससे खिलौना और मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। दीपक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में नए जूते और स्कूल का बैग खरीदने की इच्छा आई, लेकिन बच्चों, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उसने अपने दोस्त से कहा, नहीं मोहन, यह पैसा हमारा नहीं है, जिसने इसे खोया होगा वह बहुत परेशान होगा, हमें इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। दोनों बच्चे पहचान पत्र में लिखे उस पते के अनुसार उस व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी देर पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे। जैसे ही बुजुर्ग ने अपना बटवा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पूरे दिन से इसे ढूंढ रहा था, इसमें मेरी दवाइयों के पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, अगर यह नहीं मिलता तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती। बुजुर्ग ने खुशी खुशी दीपक को इनाम देना चाहा, लेकिन बच्चों, दीपक ने विनम्रता से कहा, दादाजी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो केवल आपकी चीज आपको लौटाई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मुझे केवल मेरा बटवा नहीं लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने अगले दिन ग्राम सभा में दीपक को बुलाया, सबके सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सम्मान पत्र भी दिया गया। स्कूल में भी प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को दीपक की कहानी सुनाई और कहा, बच्चों, शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, अच्छे संस्कार भी सबसे बड़ी शिक्षा हैं। उस दिन के बाद बच्चों, गांव के बच्चे दीपक को अपना आदर्श मानने लगे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों की चीज उठाने से बचने लगे। अगर किसी को रास्ते में कुछ सामान मिलता तो वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते। कुछ महीनों बाद गांव में तेज बारिश हुई, कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीपक और उसके दोस्त ने मिलकर लोगों की मदद की, किसी के घर राशन पहुंचाया, किसी के लिए दवा लाई तो किसी के बच्चों की देखभाल की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस बच्चे के मन में ईमानदारी होती है उसके मन में सेवा का भाव भी अपने आप ही आ जाता है। बच्चों, समय बीतता गया, दीपक बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर एक शिक्षक बना। वह अपने विद्यालय में बच्चों को हमेशा यही सिखाता कि अपने जीवन में धन से बड़ा चरित्र होता है। वह कहता, अगर आपके पास सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बने। लेकिन बच्चों, सभी के मन में दीपक की एक बात हमेशा याद रही, गलत रास्ता आसान जरूर हो सकता है, लेकिन सही रास्ता ही जीवन को सम्मान देता है। आज भी बच्चों, उस गांव में जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो
लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो हमारे दीपक की सीख का असर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सही काम करने से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों मिलते हैं। अच्छे संस्कार जीवन भर बच्चों हमारे साथ रहते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साथ ही बच्चों, सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। एक अच्छे बच्चे का व्यवहार पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

प्यारे से गीत के बाद एक बार हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नन्हा अर्जुन और दया का पेड़। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दयालु स्वभाव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के बच्चे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। अर्जुन के घर के सामने एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बच्चों हर गर्मी में मीठे आमों से लद जाता था। गांव के बच्चे उसकी छाया में खेलते थे, पक्षी उस पर घोंसला बनाते थे और राहगीर उसकी ठंडी छाओं में बैठकर आराम करते थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो यह सबसे बड़ी दुकान बनाई जा सकती है, इससे बहुत पैसा मिलेगा। गांव के कुछ लोग उनकी बात मानने लगे लेकिन अर्जुन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा अगर पेड़ कट गया तो पक्षी कहाँ रहेंगे, राहगीरों को छाया कौन देगा, गर्मियों में बच्चों को ठंडी जगह कहाँ मिलेगी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर पेड़ के नीचे सफाई की, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए और एक तख्ती पर लिखा पेड़ हमारी सांस है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। अर्जुन ने सबको समझाया कि पेड़ केवल फल नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, छाया और जीवन भी देता है। इसी बीच बच्चों गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी, कई छोटे पौधे सूख गए। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें पानी देता। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि हर बच्चा एक पौधे की जिम्मेदारी ले। कुछ दिनों बाद गांव में एक घायल तोता मिला, उसके पंख में चोट लगी थी। बच्चे उसे देखकर डर गए लेकिन अर्जुन उसे धीरे से घर ले आया। उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे दाना दिया और पानी दिया। लगभग बच्चे 2 सप्ताह बाद तोता पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से खुले आसमान में उड़ गया। बच्चों यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आया कि छोटे छोटे दयालु काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद तेज आंधी आई, गांव के कई पेड़ गिर गए लेकिन वही पुराना आम का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। उसने कई लोगों को गिरती शाखाओं और तेज धूप से बचाया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि उन्होंने इसे काट दिया होता तो आज यह सब संभव नहीं होता। बच्चों फिर ग्राम सभा बुलाई गई। सरपंच ने कहा आज से हमारे गांव में बिना कारण के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हर परिवार हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएगा। उसी दिन अर्जुन को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया बच्चों। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा सम्मान मेरा नहीं, इस पेड़ का है, इसने हमें जीना सिखाया है। उसकी यह बात सभी के दिलों को छू गई। अब गांव के बच्चे हर रविवार को मिलकर पौधे लगाने लगे, उनकी देखभाल करते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। कुछ वर्षों बाद वह गांव दूर दूर तक हरा भरा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर देखते कि छोटे बच्चों ने अपने अच्छे कामों से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता उसे सबसे पहले उस पुराने आम के पेड़ के पास ले जाया जाता और अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। बच्चे प्रेरित होकर कहते हम भी प्रकृति की रक्षा करेंगे और सभी जीवों से प्रेम करेंगे। आज भी बच्चों उस गांव में हर वर्ष वृक्ष मित्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन बच्चे पौधे लगाते हैं, पेड़ों की सफाई करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। दया और करुणा हर जीव के प्रति होनी चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता बच्चों दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटने में है।
एक जागरूक बच्चा पूरे गांव की सोच बदल सकता है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलू की अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

साथियों, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो, दुनिया एक दिन आप पर भरोसा करेगी। जी हाँ, मुश्किलें आपको रोकने नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो मंजिल पे झुककर आपका स्वागत करती है।

0: इस गीत के बाद साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से हाजिर होते हैं तो एक नई शख्सियत के जीवन परिचय को लेकर आते हैं। तो आज भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत अवश्य जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: मैं भी आपका बहुत बहुत आभार महसूस करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उन सभी सुनने वालों का और आपके वागड़ रेडियो स्टेशन का।
0: बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं और जैसा कि हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से हम हर रविवार को एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, उनके जीवन परिचय से रूबरू होते हैं, उनके संघर्षों के बारे में जानते हैं और साथ ही जीवन की नई प्रेरणाओं को लेकर हमारे जीवन में किन चीजों का हमें बदलाव करने की जरूरत है इस बारे में सोच विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में मैम मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी हाँ, मैं डॉक्टर सुनीता हूँ। मैंने नेचुरोपैथी में कोर्स किया और बेसिकली मेरी जो एजुकेशन थी वो फाइन आर्ट्स से थी और मुझे हमेशा लगता था कि फाइन आर्ट्स में तो मैं क्या है, रोज स्कल्पचर्स बनाऊंगी, कुछ डिजाइंस करूंगी, लेकिन इसका लोगों के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है?
0: बिल्कुल
1: कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि मुझे इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: मैंने वो फाइन आर्ट्स में बहुत पैसा कमाती, बहुत कुछ था लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव नहीं था।
0: जी जी।
1: तो इस फील्ड में आई और इस फील्ड में आने का मेरा एक और पर्पस था। मेरे छोटे बेटे को हर 5 दिन 7 दिन में ब्लीडिंग होती थी नाक से, तो समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को बहुत दिखाया, वो तब तकरीबन 4-5 महीने का रहा होगा, 4-5 महीने से लेके और 5-6 साल तक उसको ऐसा होता रहा। तो हर 15 दिन में, हर 7 दिन में अगर ब्लीडिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं।
0: जी जी।
1: डॉक्टर्स को दिखाने से ठीक नहीं हो रहा था, तो इसी पर्पस से मैं फिर इस फील्ड में आई कि मैं ना केवल अपने बच्चे को, अपने परिवार को, बल्कि लोगों को भी बहुत सारी समस्याएं, तो माओं को कितनी ज्यादा समस्याएं होती होंगी, इसलिए इस क्षेत्र में आई।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था सबसे बड़ा रीजन।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने आपका रीजन बताया कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आई, यही मैं जानना चाहूंगी कि आपने योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने के लिए जो प्रेरणा ली है उसके साथ ही आपका सफर इस क्षेत्र में कैसा रहा, कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता हो?
1: हाँ, मेरे 2 अनुभव हैं जो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक है, एक मेरी क्लाइंट नहीं कहूंगी मेरी पेशेंट थी, उनको ओवेरियन कैंसर डिक्लेयर हुआ। पैट टेस्ट कराया तो उसमें पता चला, पेपस्मेयर कराया उसमें भी पता चला, बहुत सारी चीजों में उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तभी पता चला कि हाँ उनको कैंसर है।
0: जी जी।
1: डायग्नोस हुआ, अल्ट्रासाउंड की वो रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आई और पीरियड्स उनको हो नहीं रहे थे, तकरीबन 2 साल हो गए थे कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। बेसिकली तो वो अपने पीरियड्स की वजह से आई थी।
0: बिल्कुल।
1: और जो उनके पास रिपोर्ट्स थी, एक महिला जो नहीं जानती है पढ़ना लिखना या डॉक्टर्स की चीजें, नो डाउट कि डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर आम आदमी तो नहीं समझता है कि डॉक्टर ने क्या देखा। वो रिपोर्ट लेके आई तो उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, 2 साल से मिसिंग है। मैंने कहा चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं।
0: जी जी।
1: तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ट्राई नहीं चाहिए, मुझे उपचार चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: मैंने कहा ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, तो एक मिरेकल हो सकता है प्रकृति माँ ने ऐसा सोच रखा हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज हम मिले हैं। मैंने उनका इलाज शुरू किया और 6-7 महीने के बाद जब हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनका जो कैंसर था वो रिमूव हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चला। ट्रीटमेंट के 5-6 दिन बाद उनको महावारी भी आई और फिर तब से वो रेगुलर रही। मैं उनको कटे स्नान देती थी, सनलाइट से उनका ट्रीटमेंट करती थी, सनलाइट से भी ब्लू एंड रेड कलर का उसमें टाइमिंग्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में, मैंने जब सनराइज होता है तब से लेके और 8 बजे तक मैं उनको सनलाइट देती थी और टाइमिंग्स के साथ देती थी। सनलाइट में तैयार किए हुए ऑइंटमेंट उनको दिए गए, सनलाइट में तैयार किया हुआ ही भोजन, पानी उनको हमने दिया और 6 महीने के बाद जब रिजल्ट देखा तो वो कैंसर नहीं था।
0: जी जी।
1: एक मेरी जिंदगी में ये बहुत करीब है और एक है जिनका मेरी फ्रेंड थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पूरा चेहरा, मैंने पूरे राइट साइड के चेहरे पर पूरा ब्लड आ गया, तो ब्लू हो गया।
0: बिल्कुल,
1: आप जानती हैं अंदर चोट लगती है तो वो जगह ब्लू
0: हो जाती है। बिल्कुल,
1: डॉक्टर्स को दिखाया तो जब मेरे पास आई तो उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं और मेरा चेहरा पूरा ब्लू है। तो उनको अगेन सनलाइट से ही ट्रीटमेंट दिया और जब वो ठीक हुई तकरीबन 1.5 महीना लगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो गई। आज वो यूएस में रहती हैं।
0: बिल्कुल मैम, आपके जो अनुभव हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और यादगार अनुभव हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो दोनों ही समस्या है वो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक महिला के लिए अपना चेहरा बहुत ही
1: मायने
0: रखता है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी सुंदरता उनके चेहरे से, उनके बालों से, उनके स्वस्थ शरीर से ही होती है। और दूसरी जिन महिला का आपने बात की है, और उनके लिए भी ये जो चीज थी वो बहुत ही बड़ी थी, और आपके माध्यम से उन चीजों का और प्राकृतिक तौर पे इन चीजों का निवारण हुआ है।
1: मां प्रकृति की वजह से या उनकी प्रकृति के साथ रहने से ठीक हुई।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने व्यस्त जीवन में अपनी दिनचर्या को और स्वास्थ्य की जो चीजें हैं उन्हें कैसे महत्व दिया, अभी आप इस समय में क्या करती हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखती हैं?
1: मैं इस समय हेल्थ कोचिंग करती हूँ और चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी लाइफ, देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। अब ये नहीं कहेंगे कि ये सारी बीमारियां जेनेटिकल है।
0: बिल्कुल,
1: डायबिटीज जेनेटिकल नहीं है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। थायराइड अगेन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। यानी हम जैसा जीवन जी रहे हैं उससे संबंधित हमारे जीवन में बीमारियां शामिल हो गई है। केवल खान पान या रासायनिक चीजों के इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ।
1: ये हम कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम योग करते हैं कि नहीं करते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ होती है नहीं होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे इमोशनल रिलेशंस कैसे
0: हैं। बिल्कुल,
1: ये जो 6-7 चीजें हैं ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर ये नेगेटिव हो गई तो हम बीमार होते हैं, अगर ये पॉजिटिव रही तो हम बढ़िया रहते हैं। बैलेंस रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें, अपने सोच को पॉजिटिव रखें।
0: बिल्कुल,
1: हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा शरीर भी पॉजिटिव रिस्पांस देता है।
0: बिल्कुल मैम,
1: तो मैंने अपने जीवन को इस तरह से संतुलित बनाए रखा है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सूर्य भगवान को सबसे पहले नमस्कार करती हूँ और दोनों हाथों में भर के, अरे यूँ तो सूरज को कोई बाहों में नहीं भर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोनों हाथ फैला के और सर ऊपर करके जब गहरी सांस लेती हूँ तो मुझे लगता है कि सूरज की जितनी ऊर्जा है वो मुझ में भर गई है और मेरे अंदर से जितनी भी खराब चीजें हैं वो सूर्य भगवान की जो गर्मी और एनर्जी मेरे अंदर की उसे वो खत्म हो गई और पूरा खराब चीजें बाहर आ गई और अच्छी चीजें मेरे शरीर के अंदर आ गई है। तो मेरे दिन की शुरुआत इस तरह से होती है। इसको चलाते रहने के लिए मैंने जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जुड़ा हुआ है, इनको हम अलग करके
0: नहीं देख सकते। जी जी,
1: तो इतनी सारी चीजों के बीच में अपने आप को जैसे शुरू किया, मैंने आपको बताया कि मैं सूर्य दर्शन करती हूँ सुबह सुबह, जीरे का पानी पीती हूँ, रात को जीरा भिगोती हूँ और सुबह छान कर पीती हूँ और जीरे को फिर से सुखा देती हूँ ताकि वो मेरी सब्जी में, रायते में, इसमें मैं उसको यूज कर सकूँ और नया जीरा मैं भिगो कर काम में लेती हूँ। चाय मैं पीती नहीं हूँ, मैंने चाय को डिवोर्स दिया हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: लोग अपने पति पत्नी को डिवोर्स देते हैं जिन चीजों के देते हैं, मैं उन सबसे दूर हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मुझे लगा चाय वो चीज है जिसको तलाक दिया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है ना, आज की तारीख में कहीं भी जाओ तो लोग कहेंगे अरे चाय पी लो, अमृत है आज का।
0: बिल्कुल,
1: और मुझे ये अमृत स्वीकार्य नहीं, तो नहीं पीती हूँ। इसकी जगह पर मैं रात को भिगोया हुआ बादाम लेती हूँ, 5 बादाम भिगोती हूँ, 2 अंजीर होते हैं भीगे हुए, 5 मुनक्का होता है।
0: बिल्कुल,
1: 2 अखरोट होते हैं, तो इन सबको मैं भिगो देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अखरोट मैं नहीं भी भिगोती हूँ लेकिन बाकी चीजें भिगोती हूँ, मुनक्का और अंजीर जिसमें भिगोया वो पानी पीती हूँ और मुनक्का अंजीर खा लेती हूँ, बादाम और अखरोट खाती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: ये ऐसी चीज है जो मुझे काफी टाइम तक एनर्जी देती है। अब लोग ये कहते हैं कि भाई इतना तो हमसे नहीं होगा।
0: बिल्कुल मैम,
1: क्यों नहीं होगा, आसानी से हो सकता है। अभी मैं कहीं भी टूर पे जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ लेकिन अपने साथ सारी चीजें रखते
0: हैं।
1: आप जहाँ भी जाओगे आपके पास है, वो कहते हैं ना बगल में तोसा किसका भरोसा।
0: बिल्कुल,
1: तो आपके पास सामान है, आपकी चीज है।
0: जी जी,
1: तो आपको सिर्फ एक बर्तन चाहिए और कुछ नहीं। तो इस तरह मैं अपनी चीजें मैनेज करती हूँ और नियम बनाया हुआ है कि एज हेल्थ कोच जब मैं दूसरों को बस सिखाती हूँ कि आपको अपने खाने में 50% प्रोटीन,
0: बिल्कुल
1: 25% फाइबर और 25% ही कार्ब्स लेना चाहिए।
0: जी जी।
1: अगर मैं आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के खाने के बारे में पूछूं कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो और एनालाइज करूं, तो आप ताज्जुब करेंगी कि उनके खाने में 90% कार्ब्स होता है,
0: बिल्कुल
1: प्रोटीन होता है तो मिसिंग होता है, फाइबर तो होता ही नहीं है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो अगर हम ये खाएंगे तो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं?
0: जी जी।
1: तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने खाने में खाने से पहले, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते तो एक प्रैक्टिस शुरू कर लें।
0: बिल्कुल।
1: कि खाना जब खाने बैठे तो कोई भी मूल जड़ वाली चीज, है ना, गाजर हो सकती है, मूली हो सकती है, आप वहां से शुरू करें।
0: जी जी।
1: आप गाजर ही खा लें दो, आप दो टमाटर ही खा लें खाना खाने से पहले।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन शुरुआत तो करें।
0: बिल्कुल मैम।
1: और मेरे से आप खाने की बात पूछेंगे तो एक मैं बड़ा बाउल भर के सलाद खाती हूँ, फिर चना खाती हूँ, मैंने प्रोटीन की चीजें खाती हूँ, दाल खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि अभी कुछ भूख बची है,
0: जी जी,
1: तो फिर मैं चपाती खाती हूँ, नहीं तो जरूर खाती
0: हूँ। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने आपकी दिनचर्या हमें बताई है जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, अगर हमारे सभी श्रोता साथी, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि अभी के समय में जो बहुत ज्यादा बीमारियां पड़ रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो इन सारी चीजों का समाधान हो सकता है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम सुरक्षित बनाकर रख सकते हैं। यहीं अब मैम मैं आपके जीवन का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जानना चाहूंगी जब आपके सामने चुनौती आई होगी, समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ा, लेकिन आपने अपने जीवन में समस्या का समाधान किया और वहां से आप आगे निकले।
1: मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, शायद मैं पहली बार ये बात बता रही हूँ, जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल।
1: मीन्स एक लड़की की जिंदगी की शुरुआत तब मानी जाती है जब उसकी शादी होती है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो शादी के कुछ दिनों तक, शादी से पहले मैं जॉब कर रही थी, और शादी के बाद तय हुआ कि मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे इन लॉज के यहीं रहना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: इन लॉज बहुत पैसे वाले थे, मेरी जो पेरेंटल फैमिली है वो भी बहुत पैसे वाली थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उनसे पैसा लेके अपनी जिंदगी चलाऊंगी तो कितने दिन।
0: बिल्कुल मैम।
1: ये सोच के फिर हम हस्बैंड वाइफ ने तय क्या किया, मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने ही कहा कि भैया अब तुम यहाँ से अपनी बीवी को ले जाओ और जैसे जिंदगी चलानी है चलाओ।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो मैंने जैसा बताया कि मैं जॉब कर रही थी फाइन आर्ट्स में, बहुत बढ़िया मेरा अच्छा ब्रेकअप मुझे मिला था।
0: बिल्कुल।
1: तो साल भर का जो पैसा इकट्ठा था हमने बड़ी मौज शौक में उसे निकाल दिया। शादी के बाद सपने बहुत सारे होते हैं, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, इतना खाएंगे
0: जी, जी, बिल्कुल
1: खाएंगे। तो उसमें पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने वो एक साल गुजर गया, पैसे खत्म हो गए, अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 29 रुपए 25 पैसे बचे। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, यार यहाँ तो कोई जॉब ही नहीं है जयपुर में, क्योंकि हम भरतपुर से यहाँ आए थे।
0: बिल्कुल।
1: मैं जयपुर की रहने वाली थी तो कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स मेरे काम से रिलेटेड थे, अब उनके काम से रिलेटेड मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कहा तो एक जगह काम मिला और फाइन आर्ट्स का ही काम था, मुझे ब्लू पॉटरी में कुछ वर्क करना था। मैं अपने जिनके थ्रू काम मिला था उनके थ्रू जिन्होंने काम दिया था वहाँ जाके मिली, और पहली बार जाके मैंने कहा कि सर ऐसा है मेरे पास पैसे तो है नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और मैं आपका काम करके दे दूंगी लेकिन मुझे एडवांस चाहिए।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो आप सोचिए उस समय जब कोई फ्रेशर हो और उसको कोई एडवांस पैसा दे, ऐसा कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो पहले तो यही तय हुआ कि वहां तक जाने के लिए हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो उस जमाने में 25 रुपए लीटर पेट्रोल आया करता था।
0: बिल्कुल।
1: अब वो 29 रुपए 25 पैसे में से हम अपनी गाड़ी को, यानी स्कूटर था मेरे पास, उसको हम घसीट के पेट्रोल पंप तक लेके गए।
0: जी जी।
1: 25 रुपए का पेट्रोल

0: मिल गया, बाकी मुझे 4 रुपए 25 पैसे। अब 4 रुपए 25 पैसे में जिंदगी कैसे चलेगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: बड़ी मुश्किल की जिंदगी थी। अब तो मैं बहुत एंजॉय करके उस बात को यहाँ सुना रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ,
1: ऐसा हुआ था। बिल्कुल
0: हाँ, ऐसा हुआ था। जब मैं जिन्होंने काम दिया था उनके यहाँ गई तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, ये डिजाइन है, कैसे करूँगी ये वो। मैंने कहा सर ये देखो, थोड़ा 7x12 का है, इसको बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, आप बता दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रही हो तुम, 11,000 रुपए मांग रही हो। अब ये 11,000 रुपए जो मैंने मांगे थे वो 1996 में मांगे थे। आप सोचिए कि 1996 में 11,000 रुपए बहुत होते थे।
1: बिल्कुल,
0: किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत टीडियस जॉब था।
1: जी जी मैम।
0: उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो डन। डन हो गया 11,000 में। मैंने कहा आप मुझे 5,000 एडवांस भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे 5,000 दिए। मैंने अपनी जिंदगी को इंश्योर करने के लिए हम सबसे पहले ग्रॉसरी शॉप में गए, वहां से साल भर का सामान लिया, अनाज दालें मसाले वगैरह जो मुझे साल भर के लिए चाहिए था।
1: जी जी।
0: वो सारा घर में रखा और हम पहली बार उस जो कठिन समय चल रहा था उसमें पहली बार हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो 450 रुपए का मैंने खाना खाया और हम घर आ गए।
1: बिल्कुल।
0: उससे एक दिन पहले मेरी आंखों में बहुत आंसू थे।
1: जी जी।
0: आप सोचिए, जिसने कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए, अगर दाग लग गया तो वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनेगी, ऐसी वाली लड़की जिसने नमक से रोटी खाई हो, तो आप समझ सकती हैं
1: कि कैसे उन्होंने दिन को
0: कैसे
1: बदला।
0: हाँ
1: बिल्कुल मैम।
0: तो वो जो नमक की रोटी और वो जो ऐसा वाला स्टोव होता था ना जिसमें मक्खी होती थी, पिन से उसको सीधा करते थे, वो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा घूमता था, तो वो मिट्टी के तेल वाला हवा भरने वाला पंप भरने वाला स्टोव, उफ बहुत खराब था वो समय।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज लगता है कि उसको पार करके आना शायद अच्छा ही था।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा। तो जैसा कि आपने आपके जीवन का चुनौती भरा पल हमें बताया है, यही आप आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाएं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वो अपने जीवन में बदलाव ला सके?
0: सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने खाने में फाइबर, प्रोटीन और फिर कार्ब्स,
1: बिल्कुल
0: है ना, इसका इस्तेमाल करें। मुझे याद पड़ता है कि जब नमक से रोटी खाई थी, दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे लगता था यार मैं तो नमक से चला लूंगी अपनी जिंदगी, लेकिन जो मेरे पेट के अंदर पल रहा है, एक नया नई जिंदगी है, क्या वो नमक खा के बड़ा होने वाला है?
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी आज की तारीख में भी हमारी बहुत सी बहनें
1: होंगी
0: जिनके पास पोषण से भरी हुई सब्जी नहीं है, मतलब उनकी थाली जो है वो पोषण युक्त
1: नहीं है,
0: पोषण है ही नहीं। तो सबसे पहले उनको अपने आने वाली जिंदगी के बारे में, यानी जो बच्चा वो अपने पेट में पाल रही हैं, जो देश का भविष्य है,
1: जी जी,
0: जो उनकी फैमिली का भविष्य है, उस भविष्य को वो सुरक्षित करें। पोषण वाला खाना खाएं। मैं ये शब्द नहीं कहूंगी कि संतुलित खाना खाएं।
1: बिल्कुल।
0: मैंने सिर्फ एक वर्ड में कहा कि पहले फाइबर लो, यानी सलाद खाओ भरपूर, सब्जियां खाओ, फल खाओ, उसके बाद बचे आपको लग रहा है कि भूख है तो प्रोटीन खाओ, जिसमें आप दाल खा सकती हो, चने खा सकती हो उबाल के, उनको स्टीम करके खा सकती हो, बढ़िया मसाला वसाला डाल के खा सकती हो।
1: जी जी।
0: दालें बढ़िया खानी चाहिए। अब दाल चावल हम खाते हैं तो उसमें चावल तो होता है बहुत सारा, दाल होती है जरा सी, तो वो प्रोटीन नहीं जा रहा हमारे शरीर में, कार्ब्स जा रहा है। तो कोशिश करो कि दालें ज्यादा हो, बीन्स खूब सारे हों और सीड्स हो, ये सब खाने से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है।
1: बिल्कुल। तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वागड़ रेडियो स्टेशन को। आपने मुझे ये मौका देकर मेरे अंदर का जो एक छुपा हुआ भाव था उसको बाहर लाया।
1: बिल्कुल मैम।
0: और उन सारी महिलाओं को भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुन रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सुनने के बाद अगर वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाएंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारे बागड़ स्टेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
1: बिल्कुल मैम। साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता जी जुड़ी हुई थी, उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का मैं आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, उसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हमारे बीच में नया प्रकरण जुड़ा था सबके गांधी गांधी जी के उपवास के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: अब यही इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएं अंजलि जी। तो बात करें साथियों, तो इससे मालिकों पर दबाव पड़ता था, इतनी ही इस उपवास की कमी थी, परंतु इस देश के लोग ईश्वर के नाम पर ली गई प्रतिज्ञा अपने पर आने वाली मुश्किलों के कारण भूल जाया करते थे और ये सभी गांधी जी सहन नहीं कर सकते थे।
1: जी हाँ,
0: गांधी जी के लिए ये प्रश्न हिंद में चली आई संस्कृति, प्राण जाए पर वचन न जाए की रघुकुल से चली आई संस्कृति की रक्षा के लिए था। आज श्रोता साथियों, 87 वर्षों के बाद भी सोचने पर लगता है कि गांधी जी द्वारा समस्या के समाधान के लिए रखा गया साधन शुद्धि विषयक आग्रह और मिल मालिकों द्वारा सुझाए गए पंच के नाम पर रखा गया विश्वास कुल मिलाकर अत्यंत शुभ परिणाम लाने वाला निकला।
1: बिल्कुल,
0: उस समय अंजलि जी अहमदाबाद के मजदूरों और मालिकों के द्वारा अपने विवाद के हल हेतु स्वीकृत पंच व्यवस्था आज तक इस शहर के मालिक मजदूरों दोनों के लिए लाभदायक रही है, साथ ही दूसरे नगरों और उद्योगों के लिए भी अनुकरणीय बनी हुई है।
1: बिल्कुल, यही कशिश बात करें तो ये उपवास किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं थे, दोनों वर्गों के साथ गांधी जी के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। सार्वजनिक जीवन में श्रोता साथियों होने वाली प्रतिज्ञा भंग को रोकने का इसमें प्रयास था और इस अर्थ में यह एक सांस्कृतिक प्रयास जैसा उपवास था। उसके बाद का गांधी का उपवास राजनीतिक कारणों से था, पर उसकी प्रक्रिया सांस्कृतिक थी। इस पुस्तिका में गांधी जी के श्रोता साथियों एक एक उपवास का उल्लेख करने की कल्पना नहीं है, परंतु उनके उपवास के अलग अलग पहलू पाठकों की दृष्टि में आए ऐसा प्रयत्न कशिश हम कर सकते हैं। यह उपवास था मात्र एक दिन का प्रतीक उपवास, जो उन्होंने रॉलट एक्ट का विरोध जारी जाहिर करने के लिए पूरे देश के लिए सुझाया था।
0: बिल्कुल,
1: पूरे देश में श्रोता साथियों इस कानून के विरुद्ध लोगों में तीव्र भावना प्रतिव्रत देकर इस भावना के लिए उचित अभिव्यक्ति मिले, यही इसका आशय था।
0: जी हाँ,
1: इस कार्यक्रम के बारे में गांधी जी ने कशिश श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी से सलाह ली थी, जिनके वहाँ वे मेहमान थे। विरोध प्रदर्शन करने के 3 कार्यक्रम एक साथ सूचित किए गए थे, जैसा कि पहला 24 घंटे का उपवास, दूसरा था सर्व सामान्य हड़ताल और तीसरा था प्रतिबंधित साहित्य का सार्वजनिक विक्रय। उपवास को सुबह से शाम तक रखा गया, इसके पीछे ये दृष्टि थी कि जिन मुसलमानों को रोजा रखने की आदत होती है वे लोग भी इस परंपरा को समझ सके। उपवास लंबी अवधि तक न रखने के पीछे वजह यह थी कि विशाल समुदाय भी इसमें शामिल हो सके। हड़तालों के पीछे तब तक सामान्यतः या तो आर्थिक या स्थानीय कारण रहते थे। इस समय की हड़ताल कशिश एक राष्ट्रीय प्रश्न को लेकर हो रही थी। विरोध प्रदर्शन की परंपरागत साधन को गांधी जी ने राष्ट्रीय विरोध का माध्यम बना दिया। इसके बाद कई सफल असफल प्रयोग हुए थे।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों उसी वर्ष अहमदाबाद और मुंबई में गांधी जी द्वारा 2 बार किए गए उपवास सामाजिक जीवन में व्याप्त हिंसा के विरुद्ध ही थे। ऐसे ही पर इससे बहुत बड़े व गंभीर कारण से किए गए उपवास की ब्योरेवार चर्चा हम आगे करेंगे साथियों। यहाँ मात्र उनका उल्लेख करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: जी हाँ,
0: वहीं 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए उपवास पूरे देश में चर्चा के विषय बन गए थे। इसका कारण उपवास ही नहीं बल्कि गांधी जी द्वारा उनके साथ लिया गया निर्णय भी थे। असहयोग का कार्यक्रम साथियों आगामी वर्ष अपने पूरे जोश खरोश के साथ शुरू हो चुका था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आग्रह से उसके साथ सविनय अवज्ञा और जरूरी लगी तो असहयोग कार्यक्रम भी जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका था।
1: जी हाँ,
0: इस कार्यक्रम के आरंभ में साथियों प्रयोग के बतौर बारडोली में तहसील स्तर पर आंदोलन चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरा देश अंजलि जी बारडोली के कार्यक्रम का परिणाम देखने के बाद सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग की लड़ाई शुरू करने के लिए मचल रहा था।
1: जी हाँ
0: साथियों, कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए गांधी जी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ एक अखबार में उन्होंने समाचार पढ़ा कि संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा गांव में लोगों के समूह पर गोलियां चलाते समय पुलिस की गोलियां खत्म हो गई।

0: साथियों, गोलीबारी से भी न बिखरने वाले लोगों के समूह ने उत्तेजित होकर पुलिस का पीछा किया। फिर पुलिस वाले भागे, उन्होंने जाकर पुलिस चौकी में आश्रय लिया और अंदर से दरवाजे भी बंद कर लिए। वहीं उत्तेजित समूह ने पुलिस चौकी को आग ही लगा दी। उसमें श्रोता साथियों 21 सिपाहियों और एक अधिकारी का भुर्ता बन गया। यह समाचार पढ़कर गांधी जी को बहुत धक्का लगा। उससे पहले मुंबई और मद्रास में हुई हिंसा से उनके मन में थोड़ी गिड़गिड़ाहट शुरू हो चुकी थी। चोरी चोरा की घटना को गांधी जी ने ईश्वर की ओर दिया हुआ खतरे का संकेत माना।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फौरन स्थगित करने और 5 दिनों का उपवास का निर्णय लिया। वहीं श्रोता साथियों, कांग्रेस कार्यकारिणी के जो सदस्य जेल से बाहर थे, उनको बुलाकर और समझाकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही 1921 के असहयोग आंदोलन की सफलता देखकर मुग्ध हुए नेतागण इस निर्णय से स्तब्ध रह गए।
1: बिल्कुल,
0: किसी सेनापति को यूं जीती हुई लड़ाई के समय मोर्चा समेटते उन्होंने देखा नहीं था। कई दुखी हुए, कईयों को गुस्सा भी आया और कईयों ने तो गांधी जी से पत्राचार करके अपना खेद प्रकट किया।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, कईयों ने साथियों के आगे अपना गुस्सा निकालते हुए इसे गांधी जी की भयंकर भूल कहा। संपूर्ण चोरी चोरा प्रकरण में गांधी जी के उपवास को लेकर देश में शायद ही कोई चर्चा चली। सारी चर्चा गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को लेकर चली।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, देश में समग्रतया व्यापक निराशा की भावना का लाभ लेकर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में आयोजित खास आंदोलन में उन्हें 6 बरस की सजा सुनाई गई। इस प्रसंग में गांधी जी उपवास का विषय खास चर्चा या चिंता का कारण नहीं बना। कारण यह कि उपवास 5 दिनों के निश्चित किए हुए समय तक का था। उसमें से वे अपेक्षाकृत सहजता से पार निकल गए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी उपवास प्रकरण को लेकर बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी हम ये बातें जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में गांधी के उपवास प्रकरण में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, यही बात आती है कशिश, चोरी चोरा की घटना ने देश को बड़ा सबक सिखाया।
1: बिल्कुल,
0: देश इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि यह नेता ऐसा है जो अपनी लड़ाई में शुद्धता बनाए रखने की खातिर जीती लड़ाई को भी वापस समेटते ठिठकेगा नहीं। वैसे देखें तो गांधी जी ने इस उपवास का प्रयोग अहिंसक व्यूह रचना के एक भाग के रूप में किया, परंतु इसमें उन्होंने एक ऐसी बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो गांधी के मन में तो पहले से होगा, पर जिसका उल्लेख उन्होंने बाद के कई उपवासों के समय किया था। यह बात थी ईश्वर का संकेत, किसी निराशावादी की नहीं, तथापि आंदोलन में पूरे दिल से जुड़े व्यक्ति की दृष्टि से इस घटना का मूल्यांकन करना हो तो कशिश यूँ कहा जा सकता है कि पूर्व में हुए दंगे और चोरी चोरा की घटना से गांधी जी ने देश की नब्ज टोल ली थी। उन्होंने देख लिया था कि देश राष्ट्रव्यापी सक्रिय अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार न था।
1: बिल्कुल,
0: अतः उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया।
1: जी हाँ साथियों, 1924 में दिल्ली में किया गया गांधी जी का उपवास उनके जीवन के सबसे लंबे दो उपवासों में से एक था। 1924 में कौमी एकता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अंजलि जी गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया था। दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर रहते हुए किए गए इस उपवास का निर्णय गांधी जी ने अकेले अंत प्रेरणा से ही किया था।
0: बिल्कुल,
1: अगर उनके शब्दों में कहें तो वे भीतर की आवाज के जवाब में किए गए उपवास थे। उनके अनुसार वे ईश्वर के आदेश के समान थे। गांधी जी के साथियों, इस मनोभाव को समझा जा सकता है। नितांत बाल्यकाल से गांधी जी ने अंतर के विवेक को सर्वोपरि महत्व दिया था। वे एक प्रकार से अपनी माता के भक्त ही थे, बड़ों के आदेश को हमेशा सदा शिरोधार्य करने जैसे आज्ञा पालक। पर दीवान करमचंद गांधी के घर का शौचालय साफ करने के लिए आने वाले को न छूने की माता की आज्ञा मानने को वे तैयार नहीं थे। उनका आंतरिक विवेक किसी व्यक्ति को अस्पृश्य मानने को तैयार नहीं था अंजलि जी, और यही अंतर का विवेक उन्हें आगे ऊपर यूँ कहला सका था। यदि कोई पंडित मेरे सामने ये सिद्ध कर दे कि वेद में अस्पृश्यता का उपदेश है तो मैं वेद को त्याग दूंगा पर अस्पृश्यता को नहीं मानूंगा। साथियों, गांधी जी की अनेक संकट के प्रसंगों में उन्हें उनकी अंतरात्मा के विवेक ने मार्ग सुझाया था।
0: बिल्कुल,
1: वैसा विश्वास रखते थे कि यदि कोई पूर्ण नम्रता से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उससे मार्गदर्शन मांगे तो उसे अवश्य मिल जाता है। यदि मनुष्य अपनी वंशी को निराभिमान और विकार रहित रखता है तो उस वंशी से उसे हरि का स्वर सुनाई देता है।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि दिल्ली के उपवास की घोषणा के बाद गांधी जी के कई हिंदू व मुस्लिम जिगरी मित्रों ने उनसे प्रेम व नम्रता से पूछा भी था कि इतना बड़ा निर्णय करने से पहले हमारे साथ चर्चा तो करनी थी ना, पर गांधी जी का स्पष्ट उत्तर था कि यह मामला मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का था, इसलिए दूसरे किसी को बीच में डालने की उन्हें जरूरत ही नहीं लगी। अंतरात्मा की आवाज की बात उस समय तो बहुत स्पष्ट थी, वह मात्र एक पक्षीय आदेश नहीं था। श्रोता साथियों, वह एक संवाद के अंत में प्राप्त आदेश था। देश की बिगड़ती कौमी परिस्थिति को देखकर गांधी जी अकुलाहट तो महसूस करते ही थे कशिश, इस परिस्थिति में क्या किया जाए यह उन्हें सूझ नहीं रहा था। वे प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता सुझाओ। अचानक उन्हें अंदर की आवाज सुनाई दी कि उपवास कर। उन्होंने उस आवाज से पूछा कितने दिनों के, तो उत्तर मिला 21 दिनों के। इससे पूर्व अपनी सामान्य बुद्धि से विचार करने पर उन्होंने 40 दिनों के उपवास की बात सोची, पर 21 दिनों के उपवास का उन्हें भीतर से आदेश मिला। इस उपवास के दरमियान दिल्ली में देश के धार्मिक और राष्ट्रीय नेताओं की एक परिषद बैठी थी। उसने देश की परिस्थिति और ज्यादा न बिगड़े इस दृष्टि से एक आचार संहिता तैयार की।
1: बिल्कुल,
0: इस परिषद का मुख्य लाभ तो शायद यह हुआ कशिश कि हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी समस्याएं स्पष्टता से व्यक्त की। इसमें स्पष्टता थी, कटुता अल्पतम थी, बाकी शिकायतें तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के विरुद्ध करनी थी।
1: परंतु
0: सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होने का शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि इसी शहर में गांधी जी इस समय उपवास कर रहे थे। इस उपवास ने सामान्यतः जनता के हृदय को आंदोलित करने का काम किया। लोगों के विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति के अनेक दृश्यों का वर्णन हमें महादेव भाई देसाई की डायरी में देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हम बात कर रहे थे उपवास प्रकरण के बारे में, अगले रविवार को इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी।
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
0: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है। यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत रही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भारतीय संविधान में। हमने जाना था संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है, आसान नहीं थी संविधान की राह, फिर हमने जाना तानाशाही को लेकर दूरदेशी उपाय के बारे में। यहीं अब बात करते हैं संवैधानिक लोकतंत्र और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि संवैधानिक लोकतंत्र और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हम बात करें, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि कार्यपालिका में स्थिरता होनी चाहिए और उसे दायित्वपूर्ण होना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में कार्यपालिका वर्ग के दायित्वों की दैनिक छानबीन बहुत आवश्यक है। ये कार्य संसद की प्रक्रियाओं के जरिए किए जाने की व्यवस्था की गई, जहां सवाल जवाब होते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अभिभाषण पर बहस हो सकती है। आज अगर हमारी संसद में बहस कमजोर हो रही है, मनमाने तरीके से कानून बन रहे हैं या संशोधित किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका बहुमत का अश्लील इस्तेमाल करके संविधान की मूल भावनाओं की उपेक्षा कर रही है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें राज्य व्यवस्था पर अंबेडकर के क्या विचार थे, तो श्रोता साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के मसौदे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये मसौदा ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है जिसे हम द्विमुखी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें संघ राज्य यानी कि केंद्र सरकार और प्रादेशिक राज्य यानी कि राज्य सरकार है, और इन दोनों को ही प्रभुता प्राप्त है, जिसका प्रयोग वे संविधान के मानकों के मुताबिक कर सकते हैं। संघ और राज्य सरकारों के दायित्वों और अधिकारों का निर्धारण बेहद संजीदा सोच विचार के साथ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय पर कहा कि जरा कल्पना करें कि हमारे यहाँ 20 राज्य हैं और सभी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, फौजदारी, कानून, बैंकिंग और व्यवसाय और न्याय व्यवस्था के 20 अलग अलग कानून हैं। तब नागरिकों का क्या होगा? इससे राज्य कमजोर होगा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। इस स्थिति को ध्यान में रखकर देश में एक न्याय व्यवस्था मूलभूत कानूनों और नियमों में एक रूपता और आवश्यक पदों पर नियुक्ति के लिए देश में एक लोक सेवा व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
1: जी हाँ,
0: इसकी दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि कानून, रोजगार, नीतियाँ, कृषि पर राज्य सरकारों को कायदे कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
1: बिल्कुल अंजलि, भविष्य की आशंकाएं और अंबेडकर को लेकर हम बात करें, तो उस समय एक भय यह भी व्यक्त किया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर केंद्र सरकार यानी कि संघ व्यवस्था को बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बना रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि देश को एक बना रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र एक आवश्यकता है। शायद वे यह नहीं भाव पाए कि आने वाले सालों में प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराएं भ्रष्ट पूंजी के साथ मिलकर भारत में संघीय लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर सकती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आप देखेंगे कि आज आर्थिक संसाधनों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तक की व्यवस्थाओं पर केंद्र ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और राज्य सरकारों को अपंग बना दिया है।
0: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी, लेकिन ये सच नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र के संदर्भ में भविष्य की आशंकाओं से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा में ही इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट के संदर्भ से कहा कि किसी भी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहाँ के बहुसंख्यक लोगों में हो, बल्कि देश के सभी नागरिकों में किया जाए, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली, हट्टी, अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वह स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, संवैधानिक प्रासंगिकता को लेकर हम बात करें, तो आज भी भारत का संविधान प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत में सामाजिक विधानों जिनमें भेदभाव, छुआछूत, असमानता और हिंसा के कई रूप मौजूद हैं,
0: जी हाँ,
1: उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा और संवैधानिक विधानों की मौजूदगी बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि समाज आने वाले समय में उन्हीं राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार देगा जो सामाजिक विधानों को बनाए रखने के लिए शासन करने के लिए तैयार रहेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: हुआ भी यही, जाति, आर्थिक भेद और हिंसा और पूंजी की लूट भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित होते रहे। इसी आशंका को भांपते हुए संविधान में कई छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया गया, ताकि आने वाले सरकारें संविधान को पूरी तरह से खत्म न कर दे। इसी कारण से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया।
0: जी बिल्कुल, हम देखते हैं जागृति जी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि संविधान को लागू करने के लिए वैधानिक नैतिकता बुनियादी जरूरत है। क्या हमें वैधानिक नैतिकता का प्रसार संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक प्रकृति जन्य नहीं होती, इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः ही अप्रजातंत्रात्मक है और यहाँ प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। ऐसे में शासन के नियमों के निर्धारण का काम विधान मंडल पर न छोड़ना ही बेहतर है।
1: जी हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर मानते थे अंजलि कि प्रजातंत्रात्मक संविधान को शक्तिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है, किंतु इससे जुड़ी हुई दो बातें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते हैं। एक, शासन के तरीके यानी कि सरकार किसके हितों को प्रधानता देगी, नागरिकों की मूल जरूरतों को कल्याणकारी नजरे से देखेगी या नहीं, कानून का उपयोग जनहित के लिए करेगी या अहित के लिए, सांप्रदायिक व्यवहार करेगी, पूंजी के एकाधिकार को संरक्षण देगी या नहीं। साथियों, ये सब संविधान की व्यवस्था से गहरा संबंध है। इसका मतलब ये है कि सरकार किस मंशा से संविधान का पालन करेगी, ये महत्वपूर्ण है। दो, संविधान के स्वरूप को बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतः उलट देना और शासन को संविधान की भावना के अनुरूप या प्रतिकूल बना देना बिल्कुल संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है अंजलि कि जहाँ पर वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, वहीं हम शासन के विस्तार यानी कि शासन के तरीकों की छोटी से छोटी बातों को विधान में न रखकर विधान मंडल यानी कि संसद पर छोड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि ये हमने जाना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान के बारे में, आगे हम जानेंगे महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के बारे में, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी बहुत ही अच्छी, यही हम जानते हैं महात्मा गांधी जी और भारतीय संविधान के बारे में।
1: जी हाँ,
0: तो अंजलि, भारत के संवैधानिक और संवैधानिक भारत की बात करते हुए महात्मा गांधी जी का जिक्र आना लाजमी है। यूं तो वसीधी तौर पर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, इन सब में उन्होंने जो भी लेखन किया उसमें ये झलक देखी जा सकती है कि गांधी जी दरअसल किस प्रकार का भारत चाहते थे।
1: जी बिल्कुल,
0: दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें उस संविधान की झलक महसूस की जा सकती है जो गांधी जी भारत के लिए चाहते हैं। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय संविधान के केंद्र में गांव हो, व देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो ग्राम पंचायत के स्तर से शुरू होकर केंद्र तक आए।
1: जी,
0: इसी तरह लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका को लेकर उनके विचार भी एक संवैधानिक दिशा की ओर इशारा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी कि संविधान को लेकर गांधी जी की क्या अवधारणा थी। तो श्रोता साथियों, जब भी हम भारत के संविधान को लेकर किसी तरह का विश्लेषण करते, तब हमें उस संविधान को भी संदर्भ में रखना चाहिए जो महात्मा गांधी के दिलो दिमाग में था। यह सच है कि उन्होंने स्वयं कोई संविधान नहीं तैयार किया, परंतु प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमान नारायण अग्रवाल ने महात्मा गांधी की बातों और उनके लेखन का विश्लेषण करके स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान, द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया नामक एक दस्तावेज तैयार किया था। 60 पन्नों और 22 अध्यायों में विस्तारित इस दस्तावेज में बुनियादी सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, आंचलिक सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका सरीखे विषय शामिल किए गए थे। इस दस्तावेज की भूमिका में महात्मा गांधी ने लिखा, श्री रमन नारायण अग्रवाल ने जो लिखा है वह मेरे विचारों से असंगत नहीं है।
0: साथियों, द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ KP जायसवाल के हवाले से लिखा गया है कि प्राचीन भारत में कई स्वराज व्यवस्थाएं मौजूद थी। अंजलि, ये व्यवस्था संचालन के कई ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनका प्रयोग दुनिया के किसी अन्य देश या समाज में हुआ ही नहीं। साफ है कि भारत ऐतिहासिक रूप से संवैधानिक संविधान व्यवस्थाओं के निर्माण की सक्रिय प्रयोगशाला रहा है।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि यह सच है कि भारत संविधान को लेकर गांधी के विचार किसी एक दस्तावेज में पूरी तरह संकलित नहीं है। भारत के भविष्य के संविधान को लेकर उनके विचार जहां तहां बिखरे हुए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उस वक्त के तमाम देशों के संविधानों से अलग सोच रखते हुए भी वह एक संवैधानिक लोकतंत्र के हिमायती थे। संवैधानिक लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है श्रोता साथियों, और राजनीतिक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उनके विचार के चलते गांधी को देश में संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण का आंशिक ही सही श्रेय दिया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा अंजलि। और हिंद स्वराज को लेकर हम बात करें तो गांधी जी द्वारा लिखी इस पुस्तक के जरिए हम पहली बार ये जान पाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर गांधी जी क्या विचार रखते थे। गांधी जी जिस उभरते भारत की कल्पना कर रहे थे उसे नैतिक और भौतिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: औंध का संविधान और गांधी जी को लेकर हम बात करें अंजलि, तो दक्षिण महाराष्ट्र के सतारा जिले में औंध नामक एक छोटी सी रियासत थी। उस रियासत के शासक ने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी रियासत की सत्ता नागरिकों को सौंपने का निर्णय लिया। गांधी जी इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद औंध के लिए एक संविधान तैयार करवाया।
1: जी, हम देखते हैं जागृति जी कि गांधी जी की सलाह पर तैयार किए गए औंध के संविधान में हर नागरिक को जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार, उपासना का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, निःशुल्क बुनियादी शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और न्यूनतम वेतन का अधिकार देने पर सहमति बनी।
0: जी हाँ,
1: वहाँ पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई और राजा की शक्तियाँ निर्धारित करने का काम विधायिका पर छोड़ दिया।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा, समाज कल्याण, पानी की उपलब्धता, सफाई के काम पंचायत को सौंपे गए।
0: बिल्कुल अंजलि, और औंध में विधायिका की व्यवस्था की गई, वहाँ कैबिनेट की व्यवस्था भी की गई जिसके खिलाफ विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी। छोटे मोटे मामले पंचायत में निपटाए जाने थे और बड़े मामलों के लिए खुद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि 1939 में छोटे से भारतीय राज्य में संवैधानिक लोकतंत्र का प्रयोग शुरू हुआ और ये गांधी जी की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया लोकतंत्र था, जहाँ ग्राम पंचायत राज्य की सबसे बुनियादी इकाई थी। सन 1948 में भारत में विलय होने तक औंध अपने इस संविधान का बखूबी पालन करता रहा।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी गांधी जी का राम राज्य के बारे में, तो श्रोता साथियों, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के हवाले से राम राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि धार्मिक आधार पर इसे धरती पर ईश्वर के शासन के रूप में समझा जा सकता है। राजनीतिक तौर पर इसका अर्थ है एक संपूर्ण लोकतंत्र जहां रंग, नस्ल, संपत्ति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो।
0: जी हाँ,
1: जहां जनता का शासन हो, तत्काल और कम खर्च में न्याय मिले, उपासना, वाक और प्रेस को आजादी मिले और यह सब आत्मनियम से हो। ऐसा राज्य सत्य और अहिंसा पर निर्मित हो और वहाँ ग्राम और समुदाय प्रसन्न और समृद्ध हो। स्पष्ट है कि गांधी जी का राम राज्य हमारे संविधान के प्रावधानों और उसमें प्रदत्त अधिकारों से बहुत अधिक मेल खाता है।
0: जी हाँ।
1: उसमें जिस आत्मनियम की बात की गई है वह कुछ और नहीं बल्कि नागरिक बोध है।
0: बिल्कुल,
1: निश्चित रूप से गांधी जी का राम राज्य एक आदर्श संवैधानिक लोकतंत्र की रूपरेखा सामने रखता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ग्राम और समुदाय के साथ समृद्धि की बात करता है।
0: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी बातें रही, अगले रविवार ये हमारी फिर से बातें रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी। उसमें हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में, साथ ही संसदीय व्यवस्था के बारे में, गांधी और मौलिक अधिकारों के बारे में, इसी के साथ गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या थे, अधिकार और समानता के बारे में और साथ ही गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। अगले रविवार हमारी फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ में।
1: जी बिल्कुल
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
1: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हूँ श्रोता साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर नई पारंपरिक व्यंजनों की विधि के साथ में। आज कार्यक्रम में हम व्यंजनों की विधि के बारे में अवश्य जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करवाना चाहूंगी मैं आपको कार्यक्रम के पहले इस गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको बताया था कि आज भी मैं व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ और हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म हल्का मसालेदार और घर का बना खाना खाने का मन करता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक पारंपरिक व्यंजन मेथी बाजरे के थेपले, जो कि राजस्थान और गुजरात के कई घरों में बरसात के दिनों में बड़े चाव से बनाया जाता है। इसे सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या सफर में भी खाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों हमें सामग्री चाहिए: एक कप बाजरे का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, एक कप बारीक कटी ताजी मेथी, एक चम्मच दही, एक चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच तिल, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल या घी हमें चाहिए होगा। ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद दोनों आटे को मिक्स करके उसमें सारे मसाले, दही, थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लेना है। आटा गूंथ लेने के बाद 10 मिनट तक श्रोता साथियों हमें उसे ढककर रखना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर थेपले बेलने हैं और जैसे हम दूसरे पराठे बनाते हैं वैसे ही तलवे पर हल्का घी या तेल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हमें सेकना है। इसे हम लहसुन की चटनी, दही, घर के बने अचार या छाछ के साथ परोस सकते हैं। श्रोता साथियों, बाजरा जो है उसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर बहुत सारे अच्छे स्रोत होते हैं। मेथी जो है वो पाचन में मदद करती है और शरीर को पोषण देती है। तिल शरीर को अच्छे वसा और कैल्शियम प्रदान करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कम तेल में बनने के कारण यह तले हुए नाश्ते का बेहतर विकल्प है। इसलिए आप इस बरसात के मौसम में मेथी और बाजरे के गरम गरम थेपले बनाकर खा सकते हैं, जो कि स्वाद में भी बेहतर है और पोषण से भी भरपूर है। बारिश के मौसम में बाहर का खुला तना भुना भोजन संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। वहीं घर का बना ताजा थेपला लंबे समय तक स्वादिष्ट रहता है और पेट पर भी भारी नहीं पड़ता। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्थानीय अनाज और स्वास्थ्य का खजाना है। इस बरसात के मौसम में घर की रसोई में बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें और हरी सब्जियों से बने ऐसे व्यंजन जरूर शामिल करें। स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी और अपनी परंपरा से जुड़ाव भी बना रहेगा। तो ये हमने जाना मेथी और बाजरे के थेपले के बारे में। वहीं अब एक और व्यंजन की विधि के बारे में मैं आपको बताऊं, तो हम बात करते हैं चने और मक्का का बना चटपटा घुघरी। जी हाँ श्रोता साथियों, बरसात का मौसम आते ही बाजार में ताजा मक्का और हरे चने मिलने लगते हैं। हमारे गांव में इन्हीं से बनने वाली एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश है घुघरी। यह कम तेल में बनती है, पेट भरती है और शरीर को भरपूर पोषण भी देती है। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगी: 2 कप उबले हुए हरे चने, 1 कप उबले हुए मक्के के दाने, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच अदरक, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। ये सारी श्रोता साथियों सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद हमें इसे बनाने की तैयारी शुरू करनी है। इसके लिए हमें कढ़ाई में तेल गरम करना है, जीरा और हींग का तड़का लगाना है, प्याज, अदरक, हरी मिर्च उसमें हमें अच्छे से भून लेना है। याद रखिए श्रोता साथियों कि अगर इनमें से कोई भी चीज कच्ची रह जाती है तो हमारे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से भूने, फिर टमाटर और मसाले डालकर अच्छे से पकाना है। अब उसमें उबले हुए हरे चने, मक्का डालकर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर हमें उसे पकाना है। आखिरी में नींबू का रस, हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म परोसकर सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ मिलकर इसे खाएं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि ये पोषण से भरपूर व्यंजन की विधि है। हरे चने जो होते हैं उसमें प्रोटीन और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। मक्की में हम जानते हैं कि ऊर्जा और फाइबर होता है। कम तेल में बनने वाला यह हल्का और सुपाच्य भोजन होता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी के लिए उपयुक्त है। कहना चाहूंगी कि बरसात के मौसम में इसे इसलिए खाया जाता है क्योंकि यह शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देता है, लंबे समय तक पेट भरा रखता है
बाहर मिलने वाले तने भुले नाश्ते से बेहतर होता है और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। स्थानीय और मौसमी सामग्री से बनने के कारण यह किफायती भी है। तो इस तरीके से हमने दो व्यंजनों की विधि के बारे में जाना जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आगे भी मैं एक और व्यंजन की विधि आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन कर लें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि बारिश का मौसम चल ही रहा है और यह मौसम अपने साथ ठंडी फुहारे, हरियाली और गर्मा गर्म खाने की इच्छा लेकर आता है। ऐसे मौसम में अक्सर लोग बाहर के पकौड़े, समोसे, चाट, तले भुने भोजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि यही स्वाद घर पर पारंपरिक तरीके से और पौष्टिक सामग्री के साथ बनाया जाए तो स्वाद भी मिलता है और सेहत भी बनी रहती है। तो ऐसे ही एक और व्यंजन की विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम बात करेंगे मूंग दाल और मिक्स सब्जियों से बने चटपटे चिल्ले की। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। एक कप भीगी हुई मूंग दाल, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटी गाजर कद्दूकस की हुई, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, दो हरी मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अदरक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल या घी हमें चाहिए। ये सारी सामग्री श्रोता साथियों हमें अपने घर के सदस्यों के अनुसार इकट्ठा करनी है। उसमें से आप कुछ मात्रा ऊपर नीचे कर सकते हैं जो आपने सामग्री ली है उस अनुसार। अब यहीं इसे बनाने की विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें भीगी हुई मूंग दाल को अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लेना है। अब इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, मसाले और हरा धनिया हमें मिलाना है। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल डाल देना है उस पर और उसे चारों तरफ फैला देना है। फिर हमने जो घोल तैयार किया है उसको हमें तवे पर डाल के अच्छे से पतला फैला देना है। जब वो एक तरफ से अच्छा सुनहरा हो जाए तो हमें दूसरी तरफ फिर से उसे सेकने की जरूरत है। दोनों तरफ से सुनहरा होने के बाद हम इसे खा सकते हैं। इसके लिए हरा धनिया, पुदीना की चटनी हम बना सकते हैं, टमाटर की चटनी, दही के साथ भी हम इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, मूंग दाल और मिक्स सब्जियों का चटपटा चिल्ला हमारे घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को बहुत पसंद आएगा। और बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म बनाकर हम इसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। यही बात करें कि ये व्यंजन क्यों खास है तो हम देखते हैं कि मूंग दाल जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है। सब्जियाँ जो होती हैं उसमें विटामिन, फाइबर, खनिज होता है। कम तेल में बनने के कारण यह पाचन के लिए भी हल्का रहता है। बारिश के मौसम में शरीर को ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसे पसंद करते हैं। इसलिए ताजा और गर्म भोजन ही हमें बारिश के मौसम में खाना है। कटी हुई सब्जियाँ और फल जो हम काम में ले रहे हैं उन्हें हमें अच्छी तरीके से धोकर उपयोग में लेना है। बासी और खुले में पड़ा जो भोजन होता है उसे खाने से बचना है। पीने का पानी हमें उबालकर और फिल्टर किया हुआ पीना है। अदरक, हल्दी, लहसुन और काली मिर्च जैसी पारंपरिक चीजों का सीमित उपयोग हमें करने की जरूरत है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, आपको कहना चाहूंगी कि ये सारी बातों का विशेष तौर पर जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने घर परिवार के सभी सदस्य को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो तीनों जो व्यंजनों की विधि बताई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से विदा लेना चाहेंगे। आशा करूंगी कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में नई प्यारी।

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।